मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। इसमें आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन।

ये था आज का विचार मंथन। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए जहां कदर चुगताई की ये देशभक्ति रचना समूह स्वर में।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए पंडित नरेंद्र शर्मा की ये भक्ति रचना पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे चिंतन, आलेख श्री रमेश कुमार क्षत्रिय का है।
1: मानव जीवन में सद्व्यवहार का अति महत्व होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार के कारण ही समाज और समाज के व्यक्तियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाता है। हम अच्छा व्यवहार उसे कहेंगे जब किसी को ठेस ना पहुंचाते हुए ना सिर्फ स्वयं का बल्कि दूसरे के हितों का भी ख्याल रखें। जहां सिर्फ और सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखा जाए पर हित की बजाय सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की वृत्ति हो, उसे सद्व्यवहार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसा आचरण अथवा व्यवहार परस्पर दिलों में नकारात्मक भावना उत्पन्न करता है। देखा जाए तो सुव्यवहार की वृत्ति की शुरुआत हमारे अपने घर से ही होती है। पिता पुत्र, माँ बेटी, सास बहू, ननन भाभी आदि के बीच रिश्ते की डोर व्यवहार से ही बंधी होती है। इनके बीच सकारात्मक व्यवहार इन्हें आपस में जोड़े रखता है। उदाहरण के तौर पर सास द्वारा अपनी बहू और बेटी के बीच व्यवहार में भेदभाव की लकीर कटुता पैदा करती है। बेटी द्वारा घर का बड़े से बड़ा नुकसान होने पर सास खामोश रहती है, उफ नहीं करती, बल्कि उसे नादान कहकर उसकी गलतियों पर पर्दा डालती है और पर्दा डालने का भरसक प्रयास करती है। अगर यही नुकसान बहू द्वारा हो जाए तो उसके व्यवहार में अटूट परिवर्तन परिलक्षित होता है। बेटी के लिए उदार मना और बहू द्वारा उसी गलती पर उसे खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकती। बहू बेटी के बीच परस्पर व्यवहार की यही असमानता सास के प्रति बहू के दिल में दरार पैदा कर देती है, एक ऐसी दरार जिसे भर पाना नामुमकिन है। एक सीमा में और मर्यादा में रहकर यदि कुछ कहा जाए तो व्यवहार अच्छा रह सकता है, अन्यथा उत्पन्न कटुता से परिवार टूटकर बिखर जाता है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दिलों में वो प्यार स्नेह नहीं रह जाता। इन सब का मूल कारण यही है कि हम व्यवहार कुशलता नहीं जानते। आधुनिक युग की बयार में आज हर कोई बह रहा है। व्यवहार कौशल अब कोसों दूर होता जा रहा है। अपना घर घर और दूसरे का कूड़ादान की प्रवृत्ति के चलते कटुता उत्पन्न होती है। हम इन सभी बातों पर गहन चिंतन मनन करें। अपना स्वार्थ साधने के साथ साथ दूसरे के हित अहित का भी बराबर ध्यान रखा जाए। ये वृत्ति सद्वृत्ति है। ऐसे व्यवहार परस्पर अच्छा रहता है, साथ ही अपनत्व की भावना फलीभूत होती है, जो कि वर्तमान समय की आवश्यकता है।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। आलेख था श्री रमेश कुमार क्षत्रिय का और वाचक स्वर माधवी इंडे का। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। पेश है श्री रामचरित मानस गान।

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान मीडियम वेव 374.5 मीटर पर। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। कृषि सामयिकी, इसमें आज का विषय है सब्जी फसल के लिए सुझाव।
1: इस समय हम नई सब्जियों की जातियां लगा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। ये जातियां कम समय में अधिक उपज देती हैं, साथ ही ये उर्वरक के प्रति उत्तरदायी होती हैं और इन पर प्रकाश का कोई बहुत अधिक असर नहीं होता। उदाहरण के लिए बेमौसम टमाटर हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी हो गया, ये सब हम अभी ले ही रहे हैं। सब्जियां में यदि आपको अधिक से अधिक फायदा लेना है तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के फसल चक्र की आवश्यकता पड़ती है। ये फसल चक्र भूमि की उर्वरकता, बाजार की मांग और आपके पास जो पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं कि नहीं, इस पर निर्भर करता है। हम आपको कुछ फसल चक्र बता रहे हैं जिसको आप लगाकर लाभ कमा सकते हैं। जैसे खरीफ में भिंडी लगाएं तो इसके बाद रबी में फूलगोभी लगाएं और गर्मी में फिर बैंगन ले लें, तो इससे आपको भिंडी की उपज करीबन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी। फूलगोभी की 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी। इसी प्रकार बैंगन भी आप लगभग 150 क्विंटल ले सकोगे। फिर बरबटी अभी लगा सकते हैं, रबी में टमाटर लगा सकते हैं, गर्मी में लौकी ले सकते हैं। इसमें आपको बरबटी में 50 क्विंटल मिल जाएगा, टमाटर 250 से 300 क्विंटल मिल जाएगा और लौकी 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी। फिर अभी यदि टमाटर लगाते हैं तो इसके बाद मटर ले लें रबी में, गर्मी में भिंडी ले लें। टमाटर से आपको 125 क्विंटल उपज मिलेगी, मटर की अगले मौसम में 80 से 90 क्विंटल मिल जाएगी और भिंडी में गर्मी में आप 110 क्विंटल करीब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज ले सकते हैं। अभी खरीफ की प्याज यदि आप लगाते हैं तो इसमें आपको 125 से 130 क्विंटल मिलती है उपज। इसके बाद आप लगा दें मेथी भाजी, मेथी भाजी रबी में लगाने से आपको उसमें भी 150 से 160 क्विंटल उपज मिल जाएगी। और गर्मी में बैगन ले लें, गर्मी में फिर आपको लगभग 150 क्विंटल उपज प्राप्त हो सकती है। इस तरह से एक और फसल चक्र हो सकता है। खरीफ में अभी भिंडी ले सकते हैं आप, रबी में शकरकंद ले लें और गर्मी में बरबटी ले लें। अभी यदि भिंडी लेंगे तो 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आ जाएगी, शकरकंद 150 से 200 क्विंटल आ जाएगा और बरबटी गर्मी में लेते हैं तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आ जाता है। फसल चक्र में यदि हम कोई दलहनी सब्जी जैसे कि बरबटी, मटर, फराज बीन, मेथी की भाजी ये सब लेते हैं तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जो कि उसके बाद वाली सब्जी की फसलों में काम आती है। जैसे कि हमने आपको बताया सब्जियों में बहुफसली सब्जी या फसल चक्र लेने में इसके कई कारक होते हैं, जैसे कि सिंचाई आपके पास है या नहीं। सब्जी उत्पादन में सिंचाई बहुत जरूरी होती है, परंतु बहुफसली उत्पादन में सही समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी पड़ती है और इसके लिए जल वितरण सही व्यवस्था में होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि का उचित समतलीकरण और समुचित जल निकास की व्यवस्था होना जरूरी होता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण आती है वो होती है आधारभूत सामग्री की उपलब्धता। इस तकनीक में खेत में फसलों के बीच का अंतराल बहुत कम होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि जमीन के एक ही भाग पर दो फसलें एक साथ रहती हैं। जब एक परिपक्व होने वाली रहती है तो उसके बीच में नई फसल की बुआई कर देते हैं। जैसे आलू के खेत में फरवरी माह में आलू निकालने के पहले बेल वाली सब्जी जो होती है उसके बीच में लगा देना चाहिए। इसलिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक कृषि सामग्री जैसे कि बीज, खाद, उर्वरक और पौध संरक्षण दवाएं होती हैं, समय पर समुचित मात्रा में आपके पास होना चाहिए। यदि बहुफसली आप लेना चाह रहे हैं या फसल चक्र लेना चाह रहे हैं तो अल्पावधि वाली किस्में का प्रयोग आप करें। जैसे कि आलू में कुफरी किस्म 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके तुरंत बाद हम खेत में अन्य सब्जियों को लगा सकते हैं, जैसे टमाटर लगा लें, मूली लगा लें, गाजर लगा लें, फराज भी लगा सकते हैं और इसके परिपक्व होते ही गर्मी की कोई भी सब्जी वाली फसल का उपयोग हम कर सकते हैं। अगली बात आती है नई फसल के लिए नया बाजार जरूरी होता है। अगर बाजार में हम अगेती जाति की सब्जियों का विक्रय करते हैं तो अच्छा फायदा होता है। इसलिए आपको ये चाहिए कि अगेती किस्म को लगाएं जो कि एक ही समय में पकती है, जैसे गोभी, मटर, मूली, भिंडी। इसको निश्चित समय से कुछ पहले ही बाजार में ले जाएं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा।
0: कृषि समिति के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सब्जी फसल के लिए सुझाव। जानकारी दे रहे थे विपिन यादव। मीडियम वेव 374.5 मीटर पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे आज दिन भर में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज प्रातः 10:10 पर विश्व दर्पण, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रातः 10:00 जिले की चिट्ठी और रात 8:00 सुर्खियों में, इसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार प्रातः 9 बजे। इसमें आज हमारे कलाकार हैं गोविंद नारायण दुबे। प्रातः 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम सारंगा में 10:20 पर दिन में 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम की सभा आरंभ होगी आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे। 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लोक संगीत 6:30 पर कलाकार हैं सीमा शुक्ला और 6:45 पर सुगम संगीत कलाकार हैं दिलीप कोरी।

शाम 7:21 पर किसान भाइयों का नियमित कार्यक्रम होगा कृषि जगत। इसमें आप सुनेंगे श्री कृष्ण शंकर त्रिपाठी के साथ ली गई भेंट वार्ता, मक्का और मूंग की अंतर्वर्ती खेती। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी आप सुनेंगे आज रात 10 बजे। और रात 10:30 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, आज प्रातः 9 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रसधार में आज हमारे कलाकार हैं गोविंद नारायण दुबे। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री कृष्ण शंकर त्रिपाठी के साथ ली गई भेंट वार्ता, मक्का और मूंग की अंतर्वर्तीय खेती। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग कीरवानी आप सुनेंगे रात 10 बजे। ये थी हमारे आज दिन भर में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 हुए हैं। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। भारत इण्डोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढाह्वानं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपि तु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य संसदं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गम् अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्यां परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन इण्डोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्ताङ्ग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विजन के 5 प्रमुख स्तंभ सभ्यतागत जुड़ाव, साझा विकास, सुरक्षा, समुद्री समृद्धि और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के एमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ और भारत प्रशांत क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर

0: भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
1: देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण लागत साझा करने से जुड़े लंबित भुगतानों का वन टाइम सेटलमेंट करता है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा इसे जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण राज्यों में आपसी समझ पड़ी है जिससे राष्ट्रीय नुकसान को रोका जा सका है। इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि लियोगोंग वर्ष 2008 से पीथमपुर में कार्यरत है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह विस्तार मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक निवेश और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, एसआई और सूबेदार के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विभाग द्वारा कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें से योग्यता के आधार पर 436 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में संजय परमार ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी और भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने खुशी जताई है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर खूब पानी बरस रहा है तो कुछ स्थानों में पानी की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उधर मंडला जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर राहुल धोटे ने नर्मदा घाटों और शहर के जलभराव वाले इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं गुना जिले में 1 जून से कल तक कुल 232.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आज बड़वानी, धार, गुना सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

कल रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। बता दें कि शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज के आखिरी दो मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस सांची के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। खंडवा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत मैराथन और साइबर रन का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा ऐप के प्रति जागरूक किया गया। आगर मालवा जिले में आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को अधिक से अधिक किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में युवाओं और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज एक दिवसीय तेजस कार्यशाला का आयोजन कर स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया गया। इंदौर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 12 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा 300 युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए चयनित कर रोजगार दिया गया। मंडला जिले में एमएसएमई उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कंपोजिट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं और डिजिटल कॉमर्स पर लाइव सेवाएं मिलेंगी। भोपाल जिले में नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाए और 5 जर्जर मकानों को जमींदोज किया। सिंगरौली जिले में बलिया नाला में कोयला युक्त दूषित पानी बहाने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान प्रबंधन पर 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां नोडल अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। पेश है गुड मॉर्निंग जबलपुर।

गुड मॉर्निंग जबलपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप सभी में से अधिकांश का उत्तर कुछ ऐसा होगा कि हमारा भारत ऐसा हो जहां अवसरों की कमी ना हो, जहां हर हाथ को काम मिले, जहां हर बेटी निडर होकर अपने सपनों की उड़ान भर सके और जहां किसान के चेहरे पर मुस्कान हो और युवा के हाथों में भविष्य। हम सभी के मन में हमारे एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो केवल आर्थिक रूप से मजबूत ना हो बल्कि विचारों, संस्कारों और संवेदनाओं से भी समृद्ध हो, और यही है विकसित भारत। विकसित भारत भारत सरकार का एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। जब एक शिक्षक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ाता है, जब एक किसान नई तकनीकी को अपनाकर अन्न उगाता है, जब एक वैज्ञानिक नई खोज करता है और जब एक सैनिक सीमा पर डटा रहता है और एक आम नागरिक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने लगते हैं, तभी विकसित भारत की कहानी लिखी जाती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, विकास की पहचान इमारतों से नहीं होती बल्कि उन मुस्कानों से होती है जो हर चेहरे पर दिखाई दे। तो आइए अपने सपनों को हमारे भारत के सपनों से जोड़ें, क्योंकि हमारे विकसित भारत का भविष्य किसी और के हाथों में नहीं बल्कि हमारे ही हाथों में है।

0: गुड मॉर्निंग जबलपुर में अब वक्त है कलाम शायर का और हमारे आज के शायर हैं मोहम्मद खलील।
1: अब साजिशों की शम्मा बुझा देनी चाहिए, अब साजिशों की शम्मा बुझा देनी चाहिए, लो समय मोहब्बत की बढ़ा देनी चाहिए। अमनो अमा की एक ही सूरत है दोस्तों, अमनो अमा की एक ही सूरत है दोस्तों, दीवार नफ़रतों की गिरा देनी चाहिए, दीवार नफ़रतों की गिरा देनी चाहिए। जो आग नफ़रतों की लगाते हैं हर तरफ, जो आग नफ़रतों की लगाते हैं हर तरफ, मैं कह रहा हूँ उनको सज़ा देनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ उनको सज़ा देनी चाहिए। गज़ल का मतलब इससे खिदमत है, नसीब जाग उठा हमने पाई आज़ादी, नसीब जाग उठा हमने पाई आज़ादी, दिलों में फैली मशर्रत जो आई आज़ादी, दिलों में फैली मशर्रत जो आई आज़ादी, हम उनका माने ना एहसान किस लिए लोगो, हम उनका माने ना एहसान किस लिए लोगो, बहा के खून जिन्होंने दिलाई आज़ादी, बहा के खून जिन्होंने दिलाई आज़ादी, और किसी की लुट गई असमत तो घर किसी का जला, किसी की लुट गई असमत तो घर किसी का जला, सहे हैं हमने सितम तब ये पाई आज़ादी, सहे हैं हमने सितम तब ये पाई आज़ादी। उठो वतन के जवानों फिर आज सरहद पर, उठो वतन के जवानों कि आज सरहद पर फिर आज देने लगी है दुहाई आज़ादी, फिर आज देने लगी है दुहाई आज़ादी। और मनाओ जश्न हर एक सिमत सारे भारत में, मनाओ जश्न हर एक सिमत सारे भारत में, बहार खुशियों की लेकर है आई आज़ादी, बहार खुशियों की लेकर है आई आज़ादी। और न देखे दौरे खिजां इस तरफ कभी हमजा, न देखे दौरे खिजां इस तरफ हर एक हमजा, हर एक गुल पे जवानी है लाई आज़ादी, हर एक गुल पे जवानी है लाई आज़ादी। मौजी सामीन हजरत, अभी आपने आज़ादी का गीत समाप्त फरमाया, अब पेशे खिदमत है दूसरी गज़ल के चंद अशआर जो मुकम्मल गज़ल पर मुतमिल है, समाप्त फरमा लें। अर्ज़ किया है, मैं कैसे मान लूँ ऐसा नहीं है, मैं कैसे मान लूँ ऐसा नहीं है, मोहब्बत में तेरी धोखा नहीं है, मैं कैसे मान लूँ ऐसा नहीं है, मोहब्बत में तेरी धोखा नहीं है। लुटा दी जिंदगी चाहत में जिसकी, लुटा दी जिंदगी चाहत में जिसकी, उम्मीदों का कमर चमका नहीं है, उम्मीदों का कमर चमका नहीं है, वो गमों की बदलियाँ छाई हुई हैं, गमों की बदलियाँ छाई हुई हैं, मेरे सर पर कोई साया नहीं है, गमों की बदलियाँ छाई हुई हैं, मेरे सर पर कोई साया नहीं है, मोहब्बत का सभी दम भर रहे हैं, समाज फरमाया जी, मोहब्बत का सभी दम भर रहे हैं, मेरे सर पर कोई साया नहीं है, मोहब्बत का सभी दम भर रहे हैं, मेरे सर पर कोई साया नहीं है। और ये शेर भी, उसी ने दर्द की सौगात बख्शी, उसी ने दर्द की सौगात बख्शी, जिसे दिल से जुदा रखा नहीं है, उसी ने दर्द की सौगात बख्शी, जुदा दिल से जिसे रखा नहीं है, वो बिछड़ कर वो गया जिस दिन से हमजा, मकता पेशे खिदमत है, बिछड़ कर वो गया जिस दिन से हमजा, उसी दिन से ये दिल हंसता नहीं है, उसी दिन से ये दिल हंसता नहीं है। और हाजिर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ ये गज़ल, आप समात फरमा लें। तीर नज़रों का मेरे दिल में उतर जाए तो फिर, तीर नज़रों का मेरे दिल में उतर जाए तो फिर, जिंदगी का हर हंसी लम्हा गुजर जाए तो फिर, तीन नज़रों का मेरे दिल में उतर जाए तो फिर, जिंदगी का हर हंसी लम्हा गुजर जाए तो फिर, और वक्त की रफ्तार, वक्त की रफ्तार गर यूं ही ठहर जाए तो फिर, वक्त की रफ्तार गर यूं ही ठहर जाए तो फिर, जिंदगी का हर हंसी लम्हा गुजर जाए तो फिर, जिंदगी का हर हंसी लम्हा गुजर जाए तो फिर। शेर अर्ज कर रहा हूँ, हिकारत से जिसे तू देखता है, हिकारत से जिसे तू देखता है, वो अज़्म हिम्मत से तूफ़ान पार कर जाए तो फिर, हिकारत की नज़र से तू जिसे देखता है, वो तूफ़ान पार कर जाए तो फिर, वो तूफान पार कर जाए तो फिर तू बनाता है घरौंदा रेत पर, तू बनाता है घरौंदा रेत पर, वो हवा के तेज झोंके से बिखर जाए तो फिर तू बनाता है घरौंदा, तू बनाता है घरौंदा रेत पर, वो हवा के तेज झोंके से बिखर जाए तो फिर वो नेकियों पर मक्ता पेशे खिदमत है, नेकियों पे अपनी इतराना न हमजा तू कभी, नेकियों पर अपनी इतराना न हमजा तू कभी, ये तेरा अच्छा अमल बेकार हो जाए तो फिर, ये तेरा अच्छा अमल बेकार हो जाए तो फिर, कता पेशे खिदमत है, किया है जब भी मुकद्दर ने कामयाब मुझे, किया है जब भी मुकद्दर ने कामयाब मुझे, दिखाई अपनों का देने लगा अताब मुझे, दिखाई अपनों का देने लगा अताब मुझे, मैं जब भी पिछले गुनाहों पे सोचने बैठा, मैं जब भी पिछले गुनाहों पे सोचने बैठा, मेरी खताओं ने कर डाला आप मुझे, मेरी खताओं ने कर डाला आप मुझे। बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब पेशे खिदमत है, समाज फरमान ने अर्ज़ किया है, बाली पे मेरी जाने तमन्ना नहीं आती, बाली पे मेरी जाने तमन्ना नहीं आती, क्या तुमको मेरी याद ज़रा भी नहीं आती, बाली पे मेरी जाने तमन्ना नहीं आती, क्या तुमको मेरी याद ज़रा भी नहीं आती, क्या सोच कर तू ज़ख्म लगा देता है दिल पर, क्या सोच कर तू ज़ख्म लगा देता है दिल पर, पत्थर के सनम तुझको हया भी नहीं आती, पत्थर के सनम तुझको हया भी नहीं आती, और कुछ ऐसी अदाओं से गला घोंट दिया है, अर्ज किया है, कुछ ऐसी अदाओं से गला घोंट दिया है, अब दिल से मेरे कोई सदा भी

ही नहीं आती। कुछ ऐसी अदाओं से गला घोंट दिया है, अब दिल से मेरे कोई सदा भी नहीं आती। अय मौत उठा ले मुझे आगोश में अपनी, अय मौत उठा ले मुझे आगोश में अपनी, वो भी नहीं आते हैं कज़ा भी नहीं आती। अय मौत उठा ले मुझे आगोश में अपनी, वो भी नहीं आते हैं कज़ा भी नहीं आती। अब मर्ज मोहब्बत मेरा बढ़ने लगा हद से, अर्ज किया है अब मर्ज मोहब्बत मेरा बढ़ने लगा हद से, लेकर के मेरी जान दवा भी नहीं आती। अब मर्ज मोहब्बत मेरा बढ़ने लगा हद से, लेकर के मेरी जान दवा भी नहीं आती। और इस दौर में किस तरह से जी पाएगा हमजा, मकता पेशी खिदमत है, इस दौर में किस तरह से जी पाएगा हमजा, फितरत में तेरी अब तो जफा भी नहीं आती। इस दौर में किस तरह से जी पाएगा हमजा, फितरत में तेरे अब तो जफा भी नहीं आती। गज़ल का मतलब पेशे खिदमत है आपकी समातों के हवाले, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे पसंद फरमाएंगे। जो उनके हुस्न के जलवों में रानाई नहीं होती, जो उनके हुस्न के जलवों में रानाई नहीं होती, तो हरगिज़ आँख मेरी उनकी शैदाई नहीं होती। जो उनके हुस्न के जलवों में रानाई नहीं होती, तो हरगिज़ आँख मेरी उनकी शैदाई नहीं होती। कोई हसरत कोई अरमान ना होते मेरे पूरे, कोई हसरत कोई अरमान ना होते मेरे पूरे, मेरे किरदार हस्ती में जो सच्चाई नहीं होती। कोई हसरत कोई अरमान ना होते मेरे पूरे, मेरे किरदार हस्ती में जो सच्चाई नहीं होती। परिंदों की तरह आज़ाद हम होते ज़माने में, परिंदों की तरह आज़ाद हम होते ज़माने में, परिंदों की तरह आज़ाद हम होते ज़माने में, हमारे बीच नफ़रत की अगर खाई नहीं होती। परिंदों की तरह आज़ाद हम होते ज़माने में, हमारे बीच नफ़रत की अगर खाई नहीं होती। यहाँ एक शेर बतौर ख़ास आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। अगर नक्शे कदम पर हम बुज़ुर्गों के चला करते, अगर नक्शे कदम पर हम बुज़ुर्गों के चला करते, जो अपनी आज रुसवाई है रुसवाई नहीं होती। अगर नक्शे कदम पर हम बुज़ुर्गों के चला करते, जो अपनी आज रुसवाई है रुसवाई नहीं होती। जो हम एक दूसरे के बांटते आपस में गम यारो, ये हमारा मशवरा है, हमारा पैगाम है समाज फरमा लें। जो हम एक दूसरे के बांटते आपस में गम यारो, मुसीबत की घड़ी हम पर कभी आई नहीं होती। जो हम एक दूसरे के बांटते आपस में गम यारो, मुसीबत की घड़ी हम पर कभी आई नहीं होती। तू हमजा पत्थरों की ठोकरों से कर सबक हासिल, मकता पेशे खिदमत है, तू हमजा पत्थरों की ठोकरों से कर सबक हासिल, झुका कर सर जो चलता ठोकरें खाई नहीं होती। झुका कर सर जो चलता ठोकरें खाई नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सो योर प्लेस और माइन।
3: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
2: कॉन्डम? लेकिन हम तो
3: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV/AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
2: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग जबलपुर, और गुड मॉर्निंग जबलपुर में अब वक्त है संगीतिका का। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म तीन देवियां से, बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने और आवाज किशोर कुमार की है।

लीजिए अब सुनिए हजरत जयपुरी का लिखा गीत, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है और फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

लीजिए अब सुनिए अमित खन्ना का लिखा गीत, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है और फिल्म का नाम है मनपसंद।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजे हैं समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
4: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। नौवीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के

कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था कर्ज। लीजिए अब सुनिए शहरयार का लिखा गीत आशा भोसले की आवाज़ में। संगीतकार हैं खय्याम और फिल्म का नाम है उमराव जान।

लीजिए अब सुनिए मीर तकी मीर की रचना, खयाम के संगीत निर्देशन में आवाज़ लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है बाजार।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में फैज़ अनवर का लिखा गीत। संगीत दिया है निखिल विनय ने और फिल्म का नाम है तुम बिन।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा। दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के अमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ने रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहाँ प्रतिवर्ष 6500 निर्माण उपकरणों, मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का उत्पादन होगा। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिनमें से 436 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के अनुसार पूरे 8 वर्ष बाद मध्यप्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स की ये बड़ी भर्ती हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के तीसरे मुकाबले में कल इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। सीरीज के आखिरी 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इसमें आज हमारे कलाकार हैं गोविंद नारायण दुबे। इनके साथ तबले पर संगत की है सुरेश कुमार पाठक ने। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए चौकड़िया।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार, और इसमें आज हमारे कलाकार हैं गोविंद नारायण दुबे। इन्हीं के स्वर में लीजिए अब सुनिए वृक्षारोपण गीत।

लोक रसधार कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गोविंद नारायण दुबे के स्वर में कुछ बुंदेली लोकगीत। इन्हीं के स्वर में लीजिए अब सुनिए रैया।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज हमारे कलाकार थे गोविंद नारायण दुबे, इनके साथ तबले पर संगत की थी सुरेश कुमार पाठक ने। मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर

गूंज उठी शहनाई। कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। गीत लिखा था भरत व्यास ने, संगीत दिया था वसंत देसाई ने और आवाज गीता रॉय, लता मंगेशकर और साथियों की थी। लीजिए अब सुनिए मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीत दिया है सलिल चौधरी ने और फिल्म का नाम है मधुमती।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत लव इन टोक्यो। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए जापानी।

लीजिए आप सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है और फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। डार्लिंग डार्लिंग लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत दिया है R.D. बर्मन ने।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले के लिए बीता महीना विकास, संस्कृति, कृषि और जन स्वास्थ्य गतिविधियों पर आधारित समसामयिक रूप से समृद्ध रहा। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद गर्मी के तपन और तेज धूप से अब जिले वासियों को राहत मिली है। बारिश की बूंदों और रिमझिम बारिश ने नदियां, बांध, कुओं में न केवल जल भर दिया है बल्कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगी है। पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने और लुत्फ उठाने सिंग्रामपुर, सिलापरी, मटककुंड, भदभदा और राजनगर जलाशय सहित जिले की प्रसिद्ध लघु वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपसे ने आगामी समय में जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में सोयाबीन की बोनी के लिए 10 से 12 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन खेतों में पानी भर गया है वहां से जल निकासी कर दें ताकि खेत जल्दी तैयार हो सकें। जिले में खरीफ सीजन की बोनी शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल जिले में 3,950 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी की है जो पिछले वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें धान 80,500 हेक्टेयर, मक्का 40,000 हेक्टेयर, उड़द 60,000 हेक्टेयर और सोयाबीन 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जानी है। खरीफ सीजन के बीच किसानों को राहत देते हुए जिले में 2600 मीट्रिक टन डीएपी की खेप पहुंच गई है। जिले में आई एफको की डीएपी खेप में से 2000 एमटी विपणन संघ, 1200 मीट्रिक टन सहकारी समितियां और 800 एमटी मार्कफेड गोदाम में भेजे गए हैं। वर्तमान में समितियों में 1200 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। इसके अलावा 1000 मेट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। वहीं 100 एमटी डीएपी पहले से स्टॉक में है। कुल मिलाकर समितियों के पास करीब 2300 मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगा। वहीं जिले में करीब 2000 मेट्रिक टन यूरिया की भी स्टॉक मौजूद है। दमोह जिले में साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी भाग लिया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 256 श्रद्धालु पिछले दिनों हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान दमोह रेलवे स्टेशन पर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्म राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय तथा सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले दमोह नगर के प्रसिद्ध बेलाताल जलाशय में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन हुआ जिसमें राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और दमोह विधायक जयंत मलैया ने भाग लिया। इसी दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की आमजन को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जन जन का अभियान बन गया है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजनाओं से न केवल दमोह की तस्वीर बदली है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। प्रदेश भर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे हुए हैं। 10,514 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण को नई गति मिली है। दमोह नगर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल और विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की अपील की है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव संबोधन को भी उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल में बच्चों को दवाई पिलाकर की। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। अभियान के दौरान लक्ष्य पूर्ति के लिए 1,339 बूथ बनाए गए थे। दमोह जिले के हटा की धरती पर जन्मे तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का चयन प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए किया गया है। रामेंद्र सिंह हटा स्थित डाइट में शिक्षक रहे अजय सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं। इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण कोरिया में तबला वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। जिले की

0: चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। पेश है वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी।

श्रोताओं, वंदे मातरम। एक ऐसा अमर गीत जिसकी गूंज ने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को आज़ादी का सपना देखने का साहस दिया। कहा जाता है कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते बल्कि इतिहास बन जाते हैं। वंदे मातरम ऐसा ही एक अमर स्वर है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में वंदे मातरम क्रांतिकारियों के लिए हौसला था, विश्वास था और आज़ादी का सपना भी। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन वंदे मातरम का अर्थ नहीं बदला। आज भी जब ये गीत सुनाई देता है तो दिल गर्व से भर उठता है। ये सिर्फ धुन नहीं, इतिहास की धड़कन है। ये सिर्फ गीत नहीं, भारत की पहचान है। आज जब हम वंदे मातरम की डेढ़ सदी का उत्सव मना रहे हैं तो ये केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं बल्कि उस भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी है।

अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और अर्जेंटीना तथा स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता के प्रम्बानन मंदिर जाएंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्व

0: एक दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिलती है।
2: पिछले 26 वर्षों से द थर्ड फ्लोर भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमाओं, पूजा सामग्री, रंग बिरंगे भारतीय परिधानों और पारंपरिक वस्तुओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित करा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में स्टोर की संचालिका किम होलोवैट ने बताया कि बड़ी संख्या में न्यूजीलैंड के लोग हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ भारतीय परिधानों और आध्यात्मिक परंपराओं में भी गहरी रुचि दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संदेश लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ऑकलैंड से मंजू मीणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए।
3: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा में अब केवल 4 वर्ष शेष हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के
4: विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2015 में 2030 सतत विकास कार्य योजना को अपनाने के बाद निवेश, बेहतर नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने विश्व भर में अरबों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। लगभग 100 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल और 120 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता की सुविधा मिली है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 2024 के बीच नए HIV संक्रमणों में 30% की कमी आई है। और
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

पेश है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। सारंगा सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश हमें भेजी है खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। बिलरी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवेनेकर और धीरज। और लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर। और बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

गोटेगांव से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया और दिव्यांश कुमार चौरसिया, आदर्शनगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शयना शर्मा और निवान शर्मा, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और इनके परिवार के सदस्य, गड़िया मोजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी, इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में एम जी हशमत का लिखा गीत। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है कोरा कागज़।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मीका बिरक। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, प्रमोद राही, सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही। कनेर मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार और मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश, इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है राहुल देव परमन ने।
4: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

सरे से कमला प्रसाद शर्मा और इनके परिवार के सदस्य, जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम नाज, प्रवीण और चांदनी नाज, बिलहरी कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, शारदा सिंह ठाकुर, सपना सिंह, सत्यम सिंह, शिवम सिंह, सृष्टि, मेघा सिंह और इनके परिवार के सदस्य, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए आशा भोसले और नितिन मुकेश की आवाज में संतोष आनंद का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है संतोष।

छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविंद्र सेन और यहीं से खुशी रौनक सेन, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है महबूबा।

लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गत्रे, सुभाष गत्रे, दिगंबर गत्रे, राजेश गत्रे, शिवम शुभांग और सृष्टि गत्रे, रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तान्या, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, पिंडरई मंडला से सुमत कुमार जैन, मीना जैन, कबीर जैन, वरुण जैन, वान्या जैन, और बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदित्य शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में खट्टा मीठा फिल्म का गीत। बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

इसके साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: केंद्र लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर कहा है कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवमय क्षण है। श्री मोदी द्वारा इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाना भारत के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न 47 शिक्षकों को आज ही संकुल प्राचार्य तत्काल कार्यमुक्त कर दें। यदि ये आज पदस्थापना वाली शालाओं में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका वेतन रोकें और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी

0: मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। आज का यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है श्वेता सिंगर ने।
1: चारों तरफ छा गई है काली घटाएं, बरखा की बूंद बरस रही है। ऐसा लगता है बड़ी दूर से हमसे मिलने आई हैं ये। हम भीग रहे हैं और चारों तरफ हमारी वसुंधरा भी भीग रही है। सब कुछ हरा और संपूर्ण सा लग रहा है और इस मौसम का नाम ही तो है बरखा बहार। तो चलिए इस मौसम में हम भी स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 2660902 पर। बाहर के श्रोता साथी 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपके फोन। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार भाई,
1: आपका नाम बताएं।
2: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ, ग्राम सनोतिया गुना।
1: मांगीलाल चंदेल जी।

0: बढ़िया है, रोज बारिश हो रही है वैसे।
1: अच्छा लग रहा है ना?
0: अच्छा लग रहा, बिल्कुल सुहावना ठंडा मौसम है
1: जी जी जी
0: और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है बारिश के मौसम में।
1: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो
0: आसमान में काले काले बादल होते हैं, ठंडी फुहार देते हैं, हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो बहुत बढ़िया सुहावना लगता है।
1: बिल्कुल है ना। और इस सुहाने मौसम में हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आज आपका फोन लगा है, फोन करे गीत सुने में, है ना? तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम रहेगा प्यासा सावन।
1: जी, प्यासा सावन जी।
0: गाने के बोल रहेंगे मेघ हरे मेघा मत परदेश जा रहे।
1: हाँ बिल्कुल, परदेश हम यही चाहेंगे कि वो ना जाए, खूब अच्छी बारिश हो, है ना? बिल्कुल। तो आपने फोन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, मित्रों को याद कर सकता हूँ?
1: बिल्कुल, नाम बताएं।
0: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं
1: जी,
0: गुलशन पाल जी हैं मनकारी से
1: जी,
0: और दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट धाम से, बेटा सिंह यादव जी हैं
1: जी,
0: दास बाबा जी हैं
1: जी,
0: सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं
1: जी,
0: इन सभी को बहन जी ये गाना दे दीजिए।
1: बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: मैं ग्राम गौर जामार जिला सागर मध्य प्रदेश से कटारे बात कर रहा हूँ।
0: जी तो बताएं कैसे हैं आप।
1: जी मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं।
0: मैं भी अच्छी हूँ। आपका फोन लगा है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आज।
1: आज गाने तो मुझे दो तीन याद आ रहा है, लेकिन फिल्म है जंगबाज
0: जी,
1: और गाना इसी में गंगा जैसा मन तेरा, और मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है। आप सविता जी बोल रही हैं।
0: जी बिल्कुल
1: आवाज तो लग ही रही थी।
0: जी और एक और पिक्चर का नाम बता दीजिए, एक और फिल्म आपकी जो पसंद के गीत है एक और बता दीजिए।
1: तो दूसरी मूवी रहेगी भ्रष्टाचार, और इसी में एक गाना है सुरेश वाटिकर और अनुराधा पोडवाल ने गाया है
0: जी,
1: तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती।
0: बिल्कुल, तो क्या करते हैं आप बताएं।
1: वैसे हम किसान हैं, खेती किसानी का काम है, बाकी फिर घर में बहुत सारे काम होते हैं वो करते हैं, और इसके अलावा रेडियो सुनते हैं और अलग अलग शौक है उनको भी पूरा करते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप तो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं खेती किसानी, है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, और इसके अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपके, रेडियो सुनने के अलावा।
1: तो रेडियो के अलावा ऐसा कोई चीज ही नहीं जिसमें मेरा शौक ना हो। स्पोर्ट्स में मेरा काफी इंटरेस्ट है, क्रिकेट वगैरह है।
0: अच्छा,
1: और इसके अलावा शेरो शायरी का शौक है, गाना सुनने
0: अच्छा,
1: का बहुत
0: अच्छा,
1: शौक है।
0: जी जी जी जी
1: शेरो शायरी करता हूँ, दूसरों को फॉलो करता हूँ, इसके अलावा बहुत सारे शौक है मेरे।
0: बहुत अच्छी बात है ना। देखिए आपने फोन किया, हमसे अच्छी बातें शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मीना गांव का नाम।
1: अच्छा अच्छा जी, तो बताएं कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है दीदी।
1: हाँ, आपका फोन लगा
0: गाना
1: है।
0: सुनना था।
1: हाँ जी बिल्कुल, तो क्या हालचाल है आपके यहाँ मौसम का?
0: बढ़िया, पानी गिर गया था अभी 2 दिन से, बारिश
1: अच्छा
0: थोड़ी रुकी है।
1: अच्छा, मौसम अच्छा हो गया?
0: मौसम अच्छा है मैम, बिल्कुल, पर उमस तो है अभी, क्या
1: हाँ।
0: पानी गिरा, पानी पर्याप्त तो हुआ नहीं है तो उमस तो है।
1: चलिए, कौन सी
0: गाना
1: फिल्म?
0: सुनना था,
1: हाँ बताएं, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: सेनाई पिक्चर का था मैम।
1: हाँ जी,
0: सेनाई,
1: शहनाई जी,
0: ना झटको जुल्फ से पानी, ये
1: हाँ
0: मोती फूट जाएंगे।
1: बिल्कुल। और एक और मूवी बता दीजिए आप जिनका गीत सुनना चाहेंगे।
0: एक सुना दीजिए, सिंदूर पिक्चर का, पतझर सावन बसंत बहार,
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो
0: दोनों
1: देखिए।
0: में जो मिल जाए ये
1: हाँ हाँ
0: दादाजी का
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल। हाँ आपने,
0: दोनों गाने पुराने हैं, अच्छे गाने हैं।
1: बहुत अच्छे गाने हैं, तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: ठीक है दीदी, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते। मैं
0: आपका नाम बताएं।
1: कृष्ण पाल परमार, छह महीना सोनकी तहसील देवा जिले।
0: हाँ जी, नाम बताएं एक बार फिर से।
1: कृष्ण पाल परमार।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो
0: हेलो। हाँ
1: जी,
0: जी
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: बताएं, नाम बताएं आपका।
1: रानू गुप्ता।
0: हाँ जी रानू गुप्ता, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना।
1: जी,
0: कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी।
1: मूवी का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके, और उसी में एक सॉन्ग है, देखने वालों ने क्या क्या देखा नहीं होगा।
0: बिल्कुल। जो चुपके चुपके है फिल्म का नाम, चोरी
1: चोरी
0: चोरी।
1: चोरी चुपके चुपके,
0: जी
1: ठीक है।
0: चलिए, आपने फोन किया, हमसे बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: हाँ
1: मैं
0: जी,
1: वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ, बरेला से। मैं
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: बरेला से बोल रही हूँ, जबलपुर बरेला से वंदना उपाध्याय। जी
0: वंदना उपाध्याय जी,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, आप सुनाइए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी
1: बहुत देर
0: अच्छी
1: से
0: हूँ।
1: ट्राई कर रही हूँ, आप लगा मेरा फोन।
0: अच्छा,
1: आप
0: तो क्या हाल चाल है
1: कौन बोल रहे
0: आपके?
1: हैं?
0: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है। आप
0: बढ़िया।
1: दीदी कौन बोल रहे हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा बोलती है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलती है ना।
0: आप क्या करती
1: बहुत,
0: हैं? क्या क्या करती हैं आप?
1: मैं वो सर्विस करती हूँ बैंक में,
0: अच्छा, जी,
1: अभी छुट्टी
0: सर्विस।
1: पर है।
0: अच्छा
1: महाराष्ट्र में है मेरा जॉब, तो मैं
0: अच्छा
1: जबलपुर में हूँ, तो अभी फिलहाल नहीं जा रही हूँ।
0: हाँ,
1: हाँ, मेरी मम्मी नहीं रही थी तब से, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है,
0: अच्छा,
1: हाँ, इस वजह से। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो चलिए, ये बात भी बहुत अच्छी है कि आप नौकरी भी करती हैं, साथ साथ
1: हाँ
0: रेडियो भी सुनती
1: मेरे
0: हैं।
1: हस्बैंड भी करते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं
0: अच्छा,
1: हाई स्कूल में,
0: जी
1: और मैं इसमें बैंक में हूँ।
0: बिल्कुल। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मेरे फोन लग गया, मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना। चलिए, बारिश के ऊपर कोई सा भी गाना, बादल यूं गरजता
0: जी, ये
1: है।
0: बेताब फिल्म का गाना है ना?
1: जी जी जी
0: बादल यूं गरजता,
1: हाँ,
0: बहुत प्यारा सा
1: आप
0: गाना
1: इतने
0: है।
1: अच्छे से बोलती हूँ आपका, है
0: नहीं
1: ना।
0: नहीं आप बहुत
1: और
0: अच्छा
1: आपसे ही
0: बोलते
1: पूछ
0: हैं।
1: रही हूँ, इसमें क्या दीदी,
0: हाँ
1: आवाज बहुत दबी आती है, लेकिन रेडियो में जो सुनते हैं ना,
0: जी
1: तो
0: जी
1: बहुत क्लियर आती है आवाज।
0: जी, और
1: हाँ
0: आपकी भी आवाज हमें बहुत अच्छी लग रही है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे सब लोगों से बात
0: जी
1: करके।
0: जी जी जी बिल्कुल, है ना?
1: जी
0: तो
1: जी
0: चलिए, आपसे
1: जी
0: बात
1: जी

0: हेलो
1: हेलो
0: जी न...
1: आकाशवाणी।
0: हाँ जी नमस्कार,
1: नमस्कार जी,
0: आपका नाम बताएं
1: मेरा नाम सागर सिंह है।
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सी जगह से?
1: बसई नवाब धौलपुर,
0: जबलपुर से जी। तो
1: बसई नवाब धौलपुर।
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: दामने मिल जाएगी।
0: दामिनी जी।
1: हाँ, दामिनी सावन पे झूलों ने मुझे को झुलाया, मैं
0: अच्छा
1: पर
0: अच्छा
1: किसी तरह वापस आया। दामिनी
0: अच्छा अच्छा ये कौन? अच्छा ठीक है, क्या करते हैं
1: फिल्म
0: आप?
1: का है,
0: हाँ जी
1: दामिनी पिक्चर का है।
0: जी जी जी बिल्कुल, क्या करते हैं आप?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ, प्रोटोकॉल
0: अच्छा, काम करके साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं
1: सुनते हैं।
0: जी, और हमें खुशी इस बात की कि हमारे प्रोग्राम आप सुनते हैं, है ना? कार्यक्रम में फोन
1: मैं
0: किया।
1: 90 से सुन रहा हूँ
0: जी जी
1: प्रोग्राम,
0: जी
1: पुराना
0: जी जी जी बिल्कुल, इसी बात की तो हमें खुशी।
1: पुराना
0: हाँ
1: श्रोता हूँ मैं बहुत।
0: जी, तो कार्यक्रम में आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: हसीन मुलाकात हो और रिमझिम बरसात हो
0: जी,
1: और फिर उसमें कहीं मध्य प्रदेश आकाशवाणी में बात हो,
0: बिल्कुल
1: सौगात ही सौगात हो, सौगात ही सौगात हो। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, हम जानते हैं शायद आपका नाम बताएं।
1: जी बता दीजिए बहन जी।
0: मैं कुछ भूल जा रही हूँ, माफी चाहूंगी, आपका नाम बताएं।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: जी बिल्कुल बताइए,
0: आप बताएं, मैं भूल जा रही हूँ, है ना।
1: अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं चित्रकूट दिनकर सिंह रूबरू हो रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: भूम से आपको सत सत बार राम राम पहुँचा रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, तो कैसे हैं आप?
1: दीदी जी, आपका भी नाम जानना चाहूंगा, काफी दिनों के बाद मेरा फोन लगा है।
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना। कैसे हैं आप?
1: बहुत मस्त है, और रिमझिम बरसात हो रही, उसी में तो मैं जो है ये शायरी कर रहा हूँ। तीन लोग बैठे, राजू और बब्बू वर्मा
0: जी जी,
1: और खेत में जंगल में बैठे, नर्सरी की धान की नर्सरी तैयार हो रही है, बढ़िया।
0: अच्छा,
1: बरसात कर रही है।
0: अच्छा हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, तो अभी धान की मतलब चावल की मौसम के लिए चावल बुआई कर रहे हैं आप?
1: जी, धान की जो है ये बेल तैयार हो रही है।
0: अच्छा,
1: तैयारी चल रही है और हाँ, 4 से 6 दिन के बाद जो है बेल लगने लगेगी।

0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मौसम बहुत उपयुक्त है और हम तो यही कामना करेंगे कि भरपूर बारिश हो, है ना, फसल के लिए।
1: जी। और आपसे ये भी बता दूं कि आपसे पहली, मेरे अंदाजे पहली बार बात हो रही है।
0: जी नहीं, हमने आपसे
1: जी
0: बहुत सारी बातें करी, बस मैं आपका नाम भूल गई थी, है ना जी।
1: जी जी
0: तो
1: आप
0: कौन
1: मुझे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहती थी कि मैं आपका नाम जानती हूँ, बताऊं क्या तो आपको भूल गया,
0: जी,
1: बल्कि
0: तो
1: मैं काफी
0: चलिए
1: दिनों से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी,
1: और रक्षा जी रही, कविता जी
0: जी बिल्कुल
1: रही,
0: बिल्कुल। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे
1: मुझे फिल्म जो है सनम बेवफा का गीत सुना दीजिए,
0: जी?
1: चूड़ी मजा न देगी तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा।
0: बिल्कुल, तो
1: और
0: देखिए आपने
1: प्रेमी
0: फोन
1: जो
0: किया
1: है
0: हमें।
1: वो प्रेम दादा जी है, फूलचंद है, और
0: जी जी
1: मोतीलाल चंदेल, पेटर सिंह जी है, और
0: बिल्कुल,
1: अमित तिवारी जी है, और पूजा तिवारी, इनके साथ ये गीत सुनूंगा।
0: अच्छा लगा हमें जानकर। आपके सभी मित्र ये गीत सुनना चाहते हैं, आपने फोन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: तो ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दीजिए मुझे इजाजत आपके रेडियो मित्र श्वेता को, नमस्कार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने एक पोस्ट में संस्कृत का प्रेरक कथन साझा करते हुए कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि स्वच्छ मध्य प्रदेश हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और स्वच्छ, सुंदर तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी कर श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य ने गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षकों पर कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से 47 शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना वाली शाखाओं से कार्यमुक्त कर दिया है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये चिट्ठी आई है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई ज़िला सागर से लक्ष्मण रैकवार की, साथ ही श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की यह चिट्ठी है। दीवाना फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, कुमार सानू का गाया हुआ। नदीम श्रवण ने धुन बनाई है, समीर ने गीत लिखा है।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएं, उसके पहले एक सूचना आपको दे देते हैं। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक या कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानूनन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा भी है कि वे केवल प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में ये अगला पत्र हमें मिला है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद कुमार वर्मा का। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित पसंद और भेजते हैं। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। सुनना चाहा है अभिमान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया। मजरू के बोल हैं, एस टी बर्मन की धुन है।

अगले गीत के लिए फरमाइश आई है बनिया पारा छत्तीसगढ़ धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता बेबी स्वाति माखीजा, पूजा छुटकी शरद और पूरा माखीजा परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। चंबल की कसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल रुध्यानवी ने लिखा है।

और कार्यक्रम में ये अगला गीत नसीब फिल्म का कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर और साथियों ने इसे गाए हैं। आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, सुनना पसंद किया है। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जुंदले और आरती जुंदले। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया, रोजमीन, तैमूर और समस्त तड़वी परिवार। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर।

फिल्म नसीब के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ

0: सुनाने।
1: फैक्ट्री से एक सज्जन जब चले, वो बड़े मूडी आदमी थे साहब, फैक्ट्री से जैसे ही चले तो उन्होंने देखा कि एक दूध वाला भी चला जा रहा है, वो भी साइकिल में और वो भी साइकिल में, साइकिल में ये चले जा रहे हैं। दूध वाले की कुछ पता नहीं जल्दी जाना हो गया जो भी, तो उसने दूध वाले ने थोड़ी साइकिल की स्पीड बढ़ाई और इनसे आगे निकला। जैसे ही इनसे आगे निकला, अच्छा हमसे आगे, मेरी साइकिल की स्पीड बढ़ाई, हम आगे, कभी वो आगे, कभी ये आगे, कभी वो आगे। फैक्ट्री से उन्हें मान लीजिए रांझी जाना था, और साहब ये आगे पीछे आगे पीछे। फिर हमने पूछा कभी ये हुआ क्या आगे पीछे आगे पीछे, कह लगे नहीं जाना तो रांझी था, लेकिन गुरु कभी वो आगे कभी हम पीछे, मेडिकल में जाके हराया उसको। ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि आजकल मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले तो बहुत कम थे, और इस समय मीडिया क्रांति। कोई अगर न्यूज दिन भर की दिखा रहा है तो कोई दिन में 6 बार दिखा रहा है, कोई दिन में 15 बार दिखा रहा है, कोई 24 घंटे न्यूज दिखा रहा है, पता नहीं कहीं 48 घंटे ना दिखाने लगे, कोई तुरंत की, कोई अब्बी के अब्बी की न्यूज दिखा रहा है। ऐसी न्यूज में एक न्यूज एक ने सुनी और क्या कहा दूसरे दोस्त से, दूसरे दोस्त ने क्या कहा, हाय बोले वो देखी, बोले कौन सी, बोले न्यूज वो अब्बी अब्बी वाली, बोले नहीं यार नहीं देखी। अरे उसमें दिखाया गुरु बहुत डेंजर वाला दिखाया। क्या दिखाया गया? उसमें दिखाया कि एक आदमी अपने शहर का, वो गुरु 72 घंटे माने अफ्रीका के और इंडिया के और बने विदेश के, और एक से एक खतरनाक सांपों के बीच में। अच्छा कहने कितने घंटे? 72 घंटे उस्ताद, मतलब अपन 1 घंटे के सांप नहीं रह सकते सांप के सामने, सांप कितना डर लगता है, लेकिन वो 72 घंटे सांपों के बीच में। अरे कहने लगे कोई बड़ा काम नहीं। अरे अरे तुम 72 घंटे तुम बोल रहे बड़ा काम नहीं, बोले भैया ऐसा है 72 घंटे वो सांपों के बीच रहा ना, 2 घंटे हमारी पत्नी के बीच रह के दिखाए। स्टेज पर, चैनल्स में, मीडिया में, सभी तरफ हम लोगों को प्रोग्राम करने होते हैं। खासकर लाइव प्रोग्राम में जब हम लोग शहर से बाहर जाते हैं, तो एक दूर दराज के गांव में भी मैं गया, और वहां पर चूंकि हम लोग प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा का था, हम लोग गए हुए थे, पूरी टीम हमारे साथ थी, लेकिन वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उनने कहा था कि भाई हमारे जो आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट, उनको भी आपको मौका देना पड़ेगा। हमने कहा अवश्य देंगे। तो ब्रेक के दौरान उनको भी मौका मिला, और उन्होंने भी कुछ अपने गीत प्रेजेंट किए, कुछ अपने आइटम्स प्रेजेंट किए, और उसका एक अलग मजा है। देखे साहब वो एक ऑब्जर्वेशन, हम लोगों की ऑर्केस्ट्रा चल रही थी, और वहां से अनाउंस हुआ कि और इसी के साथ ऑर्केस्ट्रा धमाल झमाल कमाल आपसे थोड़ी देर के लिए विराम लेती है, तब तक आपके लोकल आर्टिस्ट होंगे, आपके अपने आर्टिस्ट होंगे, आप खुद होंगे। आइए सुनते हैं आपके आर्टिस्टों को और आपके अपनों को। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद, बहुत अच्छा, जबलपुर से आए आप लोगों ने सुनाया, बड़ा हम लोग का दिल जो है गदगद हो गया, और अब इसके बाद अनाउंसमेंट हम ही करेंगे और हम ही सुनाएंगे और हमारे बीच के लोग भी सुनाएंगे। हाँ सुनाइए साहब। उनने अनाउंसमेंट किया और म्यूजिशियन को रोक लिया कि भाई आप बजाएंगे, यहाँ म्यूजिशियन तो नहीं, लेकिन मैं आइटम वो बता रहा हूँ कि कैसे उस आइटम को किया। और सबसे पहले बड्डू भैया और बड्डू भैया की श्रीमती जी आ रही हैं, और वो एक गाना पेश करेंगे। आजा न करिया, अब मधुर चाल में दोनों चले आ रहे हैं बड़े प्यार के साथ, मंच पे आए बकायदा, मंच के उन्होंने पैर पड़े, घुटना पड़े, और फिर उसके बाद मंच पे चढ़े। मंच पे जैसे चढ़े तो अच्छा कौन सा गाना गाएंगे भाभी जी आप बताइए। नहीं अल्लाह जी जी बोल आप तो मैं बता दो ना, वो क्या बताएं आपको, चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा गाइए भाई चांदनी का पिक्चर का गाना गाएंगी, और बहुत बढ़िया गाती हैं, और उसके पहले बलुआ में भी गा चुकी हैं, 3 इनके प्राइवेट एल्बम लॉन्च हो चुके हैं। कौन सा हुआ रहा? एक सोहरों का एल्बम लॉन्च हुआ, और एक दो जो है बधाई गीत का लॉन्च हो गया, और हमने 3-4 जो है दादरे कहरवा और पता नहीं कई कई चीज़ें हमने गाई, बहुत बढ़िया मतलब बन्ना बन्नी गाए हैं, और मतलब बहुत अच्छा अच्छा हमने गाया है, तो चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा ठीक है तो शुरू करिए। नहीं पहले म्यूजिक तो लगाओ। अब साहब म्यूजिक वाले ने म्यूजिक व्यूजिक बजाया और उन्होंने गीत गाया, कैसे दोनों ने ड्यूट गाओ सॉन्ग है। हाँ तुम तो शुरू करो पहले, तब तो हमारा नंबर है। अच्छा हम शुरू कर रहे हैं, हम सोचे कि तुम शुरू। नहीं आप शुरू करो। अब उन्होंने शुरू किया, चांदनी चांदनी तैमूरी चांदनी,
2: डेढ़ घंटा हो गए चांदनी चांदनी आगे का नहीं आओ
1: गा तो राय। फिर उन्होंने गाया, रंग भरे बदरा से तरने नन के कजरा से, मैंने जा दिल पे लिख दो तुरुना
2: चांदनी तैमोरी चांदनी तैमोरी चांदनी, कोई फूल कोई तोहफा तुम कछु भी साथ नहीं लाए, कितनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं जाते। तुम्हें नहीं पता सत ले आते यहाँ से छूछे यहाँ चले आए तुम
1: साहब ये आइटम का। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास रहा। अब चलिए दूसरे और हमारे जो गाने के लिए आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया गाते हैं। आ जाओ भैया, तुम्हारा क्या नाम?
0: हमारा नाम है वही वही नहीं हम भूल गए नाम नाम बताओ।
3: हमारा नाम है कुरकुर कुरकुर कुरकुर।
0: क्या नाम है?
3: कुरकुर कुरकुर कुरकुर।
0: कैसा नाम है?
3: शॉर्टकट में है ना लंबा बहुत बड़ा है, वो हम नहीं बता पाएंगे, हमारे भैया बता पाते।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, आप कौन सा गाना गाएंगे?
3: आज की पिक्चर का गाएंगे।
0: अच्छा गाइए आज की पिक्चर का गाना। देखिए बहुत बढ़िया है खुरखुर खुरखुर जी, और ये आज की पिक्चर का गाना गाएंगे।
1: कौन सा वाला?
3: टाइटल वाला गाना गाएंगे।
0: टाइटल वाला गाना गाइए। कैसे उन्होंने गाना का सत्यानाश किया।
3: मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, अगर साथ छोड़ा ये बाधों न तोड़ा, मैं तुमको भुला दे आऊंगा।
1: ऐसा गा रहा है बेसुरा। चलो इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात है कि हमारे यहाँ जो गांव के मुखिया हैं उनकी बिटिया है और वो भी गाना गाएगी। अच्छा अच्छा बिटिया नहीं आ रही है, उन्होंने अपने भैया को भेज दिया है, और उनके भैया रामलीला में काफ़ी फीमेल रोल करते हैं, कौशल्या सुमित्रा और न जाने कितने रोल किए हैं उन्होंने, फीमेल रोल किए हैं, और इसके अलावा वो सहेली सखी भी बन चुके हैं। आइए
0: बहुत बढ़िया, कौन सा गाना गाओगे?
2: हम पिक्चर वाले गाने गाएंगे।
0: हाँ मैं रामलीला का नहीं गा पा रहा हूँ, आप गाइए पिक्चर के गाने। कौन सा गाएंगे?
2: हम वाली पिक्चर का गाएंगे जो ऋतिक रोशन की पिक्चर का है।
0: हाँ गाइए। तो उन्होंने गाना गाया,

0: प्यारी है, कहो ना प्यारी है।
1: और अब एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूं। ऐसी फिल्म की कहानी जिसको मैं देखने गया था और मेरा साथी था मेरे साथ लल्लू। लल्लू जो था उसको पान खाने का बड़ा शौक था, तो मैं और लल्लू दोनों फिल्म देखने के लिए गए। बड़े प्यारे प्यारे गाने थे उस फिल्म में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो साहब ऐसा है कि फिल्मों का शौक तो सभी को है, रेडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हम सुनते हैं। कभी कभी हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चरें दिखाते हैं, गाने भी दिखाते हैं। खैर, तो उसी शौक को पूरा करने के लिए हम फिल्म देखने के लिए गए। साहब टिकट ली, टिकट लेने के बाद जब उस थिएटर में यानी टॉकीज के जो द्वार था, दरवाजा था, वहां जब हम पहुंचे तो हमने अपनी टिकट किसको दी? गेट कीपर को। उसने टिकट ली और हमसे कहा कि हाँ आप बैठिए, आपकी चेयर का नंबर है K41-42, यानी के सीरीज में 41-42। तो हमने लल्लू से बोला चल भाई अपन बैठे। तो लल्लू मुझसे बोलता है, इसके मुंह में पहले से पान था, उसके बाद मुझसे लल्लू बोलता है,
2: एक काम करो भाई साहब, आप जाकर बैठो, मैं एक आध पान खा के आता हूँ।
1: हमने कहा भाई साहब आपके मुंह में पान तो पहले से है। तो वो मुझसे बोलता है,
2: अरे नहीं ऐसा है कि अब एक आध पान और खा लेंगे, एक आध हम आपके लिए ले आएंगे।
1: हमने बिल्कुल ठीक है। मैं अकेला उस हॉल में जाकर बैठ गया, लल्लू भैया गए थे पान खाने। तो मैं जहां बैठा था क्या देखता हूं क्या सुनता हूं, एक भाई साहब बिल्कुल मेरे बाजू वाली कुर्सी में बैठ के सो रहे थे। बड़े खर्राटे ले रहे थे, बड़ी जोर जोर से। हमने कहा भाई साहब, ओ भाई साहब ये सोने की जगह नहीं है भाई साहब, यहाँ लोग सिनेमा देखने आते हैं, हैं? आप सिनेमा देखने की जगह सो रहे हो, अब घर में जाके सो? तो ये मुझसे बोलते हैं साहब ऐसा है हम घर में जाके सो नहीं सकते। मैंने कहा आप क्यों घर में जाके सो नहीं सकते? इसलिए नहीं सो सकते भाई साहब कि मेरी धर्मपत्नी मेरे को सोने नहीं देती है। कभी बोलती है बर्तन मांजो, कभी बोलती है कपड़े धो, कभी बोलती है घर में झाड़ू लगाओ, कभी बोलती है पैर में मालिश करो, ये करो वो करो, फलाना करो ठिकाना करो। हमने अरे अरे अरे अरे बड़ी दयनीय स्थिति है तुम्हारी, तुमने क्या दहेज वगैरह ज्यादा लिया था क्या शादी में? तो वो मुझसे बोलते नहीं साहब दहेज मैंने नहीं लिया, मैं तो बिल्कुल दहेज का विरोधी हूँ, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने दहेज जरूर लिया था, वो काम उन्होंने गलत किया था, लेकिन दहेज लेने के थोड़े दिन के बाद वो चल दिए ऊपर चले गए। वो तो खैर ऊपर चले गए लेकिन ये सब काम काज करने को मुझको छोड़ गए। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सो जाइए या देखिए पिक्चर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब, ये तो सो गए। अब इनके खर्राटे की आवाज मेरे दाहिने कान में आ रही थी और जो बायां कान मेरा खाली था वो क्या सुन रहा था? जो पर्दे के अंदर से गाना आ रहा था, कलाकार पर्दे पे आ गए, उन्होंने फटे

कपड़े पहने हैं और पागल जैसा उनका सीन, मतलब दृश्य है, ड्रेसेस है, पूरा बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। वो गाना आया, बाएं कान से सुना, दाहिने कान से, जो भैया बाजू में बैठे थे, भगवान इनका भला करे, इनके खर्राटे। तो खर्राटे और गाना, गाना और खर्राटे कैसे सुनाई दे रहा, सुनिए।

हमने कहा उठो यहाँ से, उठो यहाँ से और तुम सीधे घर जाओ। अरे हम फिल्म देखने के लिए आए हैं, गाना सुनने आए हैं, तुम तो खर्राटे लिए जा रहे हो, जमाई लिए जा रहे हो। इनको तो साहब मैंने भगा दिया, ये तो चल दिए। एक भाई साहब मेरे इस तरफ यानी बाएं की तरफ बैठे हुए थे, बाएं हाथ की तरफ, वो तालियां बजा रहे थे, बड़ी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मैंने उनसे बोला क्यों भाई ताली क्यों बजा रहे हैं? कोई अच्छा सीन पर्दे पे आए, जब कोई बहुत बढ़िया सा डायलॉग आए, उस समय आपको ताली बजाना चाहिए। तो ये मुझसे क्या बोलते हैं कि साहब हम ताली इसलिए बजा रहे हैं कि कहीं हमको नींद ना आ जाए। तो साहब उनको शांत किया, पिक्चर आगे बढ़ी, बड़ा मजा आया। फिर वो मेन पिक्चर चालू हो गई, उसमें आगे कौन वो मुख्य कलाकार हीरो थे उस फिल्म के, चले जा रहे थे, उसका एक मेन गाना आया, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा। ये गीत भी मैं अच्छे से नहीं सुन पाया साहब। क्यों नहीं सुन पाया? इसलिए नहीं सुन पाया कि एक भाई साहब मेरे पीछे बैठे हुए थे, उनको खांसने की बीमारी थी। अब आप सोचेंगे उनके खांसने में क्या तकलीफ, हम जो भारत के वासी हैं उनकी और हमारी, हमारी और आपकी खांसी कैसी होती, बड़ी साधारण, किस तरह से कुछ इस तरह की खांसी। लेकिन उनकी खांसी ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि विदेश से बुलवाई हो, भगवान जाने कहां से बुलवाई थी, उत्तर से बुलवाई थी कि दक्षिण से बुलवाई थी कि पश्चिम से, मालूम नहीं कहां से बुलवाई थी। क्योंकि उनकी खांसी, खांसने का बड़ा अजीब गरीब स्टाइल था, जब वो खांसते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रॉकेट, हवाई जहाज आसमान की तरफ हाई स्पीड में चला जा रहा हो। किस तरह से खांसते थे जरा देखेंगे, ये उनके खांसी की आवाज। अब बताइए ये खांस रहे हैं पीछे से, हीरो पर्दे पे है, वो गा रहा है आगे से, मैं बीचों बीच। गाना खांसना, खांसना गाना, एक साथ कैसे सुनाई दिया? पहले तो वो गाना सुन लें आप, दो तीन लाइन ओरिजिनल जो बिना खांसी का है, और उसके बाद खांसी के साथ किस तरह से सुनाई दे रहा है मुझको, मैंने कैसा सुना वो मैं सुनाता हूं आपको ओरिजिनल गीत।

ये ओरिजिनल गीत है, ये सुनने मैं गया था जिसका मैंने शुल्क दिया था, लेकिन एक सेवा जो निशुल्क पीछे से उपलब्ध हो रही थी वो भी मेरे अपने मेरे भाग में आ गई। तो कभी गाना कभी खांसना, कभी गाना कभी खांसना, कैसा सुनाई दे रहा है सुनिए।

0: बंदे पे तेरे गया बंदा में सीधा दा तेरा वा दे पे तेरे गया बंदा में सीधा दा तेरा वा अरे दा तेरा वा अरे दा तेरा वा अरे दा तेरा हमने उठो यहां से अलग हो हट जाओ यहां से। तो इनको तो खैर भगा दिया लेकिन ये दो मिनट के बाद फिर वापस आ गए। हमने क्यों आ गए, तुम घर क्यों नहीं गए? तो ये मुझसे बोलते हैं घर कैसे जाएंगे साहब, घर वालों ने यहाँ पे भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा घर वालों ने यहाँ पे भेजा है। हाँ तो भैया दवाई क्यों नहीं करा लेते भाई साहब, दवाई कराइए, होम्योपैथिक कराइए, एलियोपैथिक कराइए, आयुर्वेदिक कराइए, यूनानी कराइए, नेचुरोपैथी कराइए भाई साहब, कुछ ना कुछ तो इलाज होगा इसका खांसी का, आप कब से खांस रहे हैं? तो ये मुझसे बोलते हैं भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा हूँ। 18 साल से आप अखंड खांस रहे हैं, बहुत अच्छे साहब, वाह भगवान आपका भला करे हैं। और ये खांसी लेके आप मेरे सामने आए, मेरी पूरी पिक्चर आपने गड़बड़ कर दी भाई साहब। ओहो, तो पिक्चर में यानी हॉल में अंधेरा था, ना हाथ को हाथ दिख रहा था, ना पैर को पैर दिख रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, अंधेरे में एक गोली उनको दे दी। किनको दे दी? वो खांसने वाले को। खांसने वाले को मैंने कहा लो भाई साहब इसको आप चूसते रहना, जैसे बच्चे मुंह में आपके चॉकलेट वगैरह लेके गोली बिस्कुट वगैरह लेके चूसते रहते हैं ना, वैसा आप चूसते रहिएगा हैं। इसको गले से नीचे नहीं उतारना, नहीं तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो ये मुझसे बोलता है
1: ये साहब काहे की दवाई है?
0: ये आपके खांसी की दवाई है, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। चलिए ठीक है साहब। उनको मैंने अंधेरे में एक गोली दे दी, उनको तो खैर आराम 2-4 मिनट के बाद मिला। तो मुझसे क्या बोलते हैं भाई साहब मैंने कहा बोलिए साहब क्या बात। अरे साहब ऐसी कौन सी जादू वाली गोली दे दी साहब आपने, भगवान आपका भला करे साहब, बिल्कुल मेरी खांसी तो बिल्कुल रुक गई साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप तो मेरे को एक काम करिए, वो जो दवाई आपने मेरे को दी है ना उसका आप मेरे को नाम लिख के दे दीजिए ताकि मैं बाजार से खरीद लेता हूँ। भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा था, विदाउट ब्रेक खांस रहा था, मैं अखंड खांस रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, वो क्या है कि वो जो हमने तुमको दवाई दी है वो बाजार की दवाई नहीं है, हमारा अपने घर का ओन प्रोडक्ट है, हम स्वयं उस दवाई को बनाते हैं, बाजारू दवाई हमने तुमको नहीं दी। भगवान भला करे उस खांसी वाले का, और भगवान मेरा भी भला करे, उसकी खांसी बंद हो गई। लेकिन उसने जो मुझसे पूछा था कि दवाई का नाम लिख के दीजिए, तो मैं क्या दवाई का नाम लिख के देता? अरे मैंने उसको दवाई दी ही नहीं थी, मैंने तो अपने कोट का बटन तोड़ा और उसको दे दिया था। चलिए साहब पिक्चर आगे बढ़ती है, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आ रहा था। अचानक एक आवाज मेरे कान में आई, वो कौन सी आवाज थी?
2: भाई साहब।
0: हमने कौन है भाई?
2: मैं लल्लू आपका दोस्त।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई साहब जो पान खाने गए थे मेरे मित्र, ये आ गए हैं हमने। अच्छा अच्छा, आ जाइए अंदर, आ जाइए हॉल के अंदर आ जाइए। तो ये मुझसे बोलते हैं
2: कहाँ से आ जाइए, हमको तो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है।
0: हमने किसी को नहीं दिखता भाई साहब अंधेरे में, आपको कैसे दिखाई देगा अंधेरे में है? चले आइए, एक काम करिए, वो जो कुर्सियों के बीच में रास्ता है जहां और लोग बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों की लाइन है उसके जो बीच में रास्ता है, धीरे धीरे चले आइए, धीरे धीरे चले आइए है, वहां मैं आपका आगे आके हाथ पकड़ लूंगा।
2: जी भाई साहब।
0: तो ये साहब अंधेरे में धीरे धीरे धीरे धीरे चले आ रहे हैं, मेरी तरफ बढ़े जा रहे हैं, लेकिन इनके कारण अंधेरे में किसको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, जरा मैं उनकी कहानी आपको सुनाता हूं, बड़े संक्षिप्त में, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो ये धीरे धीरे चले आ रहे, ये अंधेरे में चले, ये चले, एक ने कहा अरे ये क्या करते हो? क्यों भाई साहब क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
0: अरे मेरी मूंगफली पूरी आपने गिरा दी, मेरी पूरी मूंगफली गिरा दी। अरे अरे अरे ये मेरे जूते कहाँ लेके जा रहे हो भाई, मेरे जूते कहाँ?
2: अरे साहब गलती हो गई साहब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा साहब। अरे बाप रे,
0: ये चले आ रहे। अचानक किसी ने मजाक कर दिया बीच में, कहा बैठ जाओ। तो ये सोचे कि मेरे पास आ गए, मैंने बोला बैठ जाओ, मैं तो बहुत दूर बैठा था, किसी ने मजाक कर दिया, कहा बैठ जाओ, तो ये बैठ गए। एक छोटा बच्चा बैठा था उसकी गोदी में वो बैठ गए तो उनके पिताजी ने एक तमाचा उसको मारा, वो गिरते पड़ते वो लल्लू लाल हमारे पास आए। हमने उनसे बोला क्यों लल्लू लाल कहाँ बैठ गए थे?
2: अरे कहले बहुत अच्छी जगह थी लेकिन एक हमको भगा दिया मार पीट के।
0: हमने वो तो बच्चा बैठा था भाई साहब, है वहां नहीं बैठना चाहिए आपको। खैर
3: मैंने उनको बैठाया अपने पास, फिल्म आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। इंटरवल हो गया मध्यांतर, जब मध्यांतर होता है हम और आप सभी जब टॉकीज से बाहर चाय कॉफ़ी वगैरह पान वगैरह लेने जाते हैं तो सब अपने कपड़े अपने सब सही करते हैं, कोई सामान छूट ना जाए उसकी खास ध्यान देते हैं उस बात पे, तो वो सब कुछ मैंने किया जो आप करते हैं, हम सभी करते हैं। तो मैंने अपने लल्लू भैया से बोला, चलो इंटरवल होने के 5 मिनट पहले तो आप आए हो यार, हैं, चलो फिर से एक पान खा लेना, मैं चाय पी लूँगा। तो हम लोग कुर्सी से जब खड़े होने लगे तो मैंने अपना जो कोट पहना था, नया कोट पहना था, उसका मैंने दाहिना हाथ देखा, बहुत बुरी तरह गीला था। हमने ओहो ये गीला कैसे हो गया भाई, किसी ने पानी फेंका क्या? पानी कौन फेंकता भाई, किसी के हाथ में थाली नहीं, लोटा नहीं, गिलास नहीं, शीशी नहीं, बॉटल नहीं, हमने फिर पानी किसने फेंका? चारों तरफ देखा, किसी के हाथ में कुछ नहीं। अचानक मैंने बालकनी की तरफ ध्यान दिया, बालकनी की तरफ मतलब ये हुआ कि मैं नीचे बैठा था, वो कम पैसे वाली जो क्लास होती है, 5 रुपए की टिकट थी या 10 रुपए की, कुछ याद सा नहीं है, ऊपर बालकनी थी, नीचे मैं बैठा था। अचानक मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एक बहन जी बालकनी से नीचे झांक रही थी और रो रही थी बड़ी जोर जोर से। हमने कहा, बहुत अच्छे बहन जी, आपने तो क्या रोया भाई, वाह वाह, मेरे पूरे कोट में आपके आंसू गिर गए हैं। फिर मैंने चिल्लाया, मैंने कहा, बहन जी, ए बहन जी, इधर देखिए बहन जी। तो बहन जी ऊपर से देख के मुझको बोलती है, क्या है? अरे बहन जी, ऐसा कैसा रोया बहन जी आपने, हैं? आपके आंसुओं से तो हमारा पूरा कोट खराब हो गया है, पीछे होके रोइए। तो वो पीछे हो गई और अपने पतिदेव, जो उनके पतिदेव उनके साथ आए थे, उनसे फौरन उन्होंने बोला कि आपको कितनी बार बोला था यहाँ बालकनी की दीवार के वहां पर आप मुन्ने को मत खड़ा करो। आप समझ रहे होंगे कि उनके बच्चे ने ऊपर से क्या किया, जो भी कुछ किया वो पूरा दाहिने हाथ के, मेरे कोट के दाहिने हाथ में चला आया। वो तो अच्छा हुआ मैं जमाई नहीं ले रहा था, नहीं तो पानी भी पीने नहीं उठना पड़ता मेरे को। फिल्म में हम लोग बाहर निकले, एक कैंटीन होती जहाँ चाय, समोसे, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी वगैरह सब कुछ मिलता है, वहाँ हम पहुँचे तो हमने क्या देखा, हमने तो खैर होटल के नौकर को बुला लिया, हमने भाई साहब यहाँ आइए मेरे लिए 2 चाय ले आइएगा, एक इनके लिए हमारे लल्लू भैया के लिए और एक मेरे लिए। तो साहब 2 चाय आ गई, हम पीने लगे, हम क्या देखते हैं कि हमारी कुर्सी के सामने 2 सज्जन आकर बैठ गए। वो 2 सज्जन कौन थे? वो थे तो बड़े अच्छे, लेकिन उन्होंने होटल के नौकर को थोड़ा सा सताने के लिए न जाने कुछ क्या किया, कुछ कॉमेडी के मूड में थे, हंसी मजाक के मूड में थे। तो एक जो सज्जन थे उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन सही तरीके से नहीं दिया, वो थे बहुत सही लेकिन वो अटक अटक के बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने कुछ मजाक सा किया, अटक अटक के बोलने लगे। उनके साथ जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने भी मजाक का मूड बनाया, उन्होंने क्या किया, उन नाक से बोलने लगे। अब बताइए, एक सच्चा बढ़िया बोलने वाला आदमी अगर नाक से बोले तो कैसा बोलेगा, और सही बोलने वाला, बिल्कुल लगातार शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, अगर अटक अटक बोले, अटक अटक के बोले तो कैसा बोलेगा। तो उन्होंने होटल के नौकर को बुलाया, सबसे पहले बुलाया अटक अटक के बोलने वाले भाई ने मजाक के बतौर, इधर आ भाई। नौकर आ गया, उसने कर्मचारी ने, होटल के कर्मचारी ने उनसे पूछा, हाँ साहब क्या चाहिए? तो वो अटक अटक के बोलने वाला बोलता है, आपकी दुकान में के के के के के के के के के के के क्या क्या है? तो नौकर बोलता है, आलू बंडा है, समोसा है, दालमोठ है, भाजी बड़ा है, रोटी है, पराठा है, चावल सादा है, चावल फ्राई है, नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, सब कुछ होगा साहब, अंडा भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी मिलेगा, चाय मिलेगा, कॉफ़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो वो जो अटक अटक के बोल रहे थे उनने फिर मजाक किया, उन्होंने कहा, ये वो सब नहीं, वो सुबह सुबह तुम लोग कढ़ाई में तेल डालकर चने के आटे में प्याज, लहसुन, पालक की भाजी, सोडा, नमक डालकर वो दे दे दे दे ला दो प्लेट। तो नौकर बोलता है, साहब हम तो, हमको समझ में नहीं आया साहब आपको चाहिए क्या है, ये धे धे धे धे हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जरा अच्छे से बोलिए साहब, ये मिस्टर भाई साहब, ये जो क्या आप इनके साथ आए क्या? तो वो जो दूसरा था जो नाक से बोलने का मूड बना रहा था वो बोलता है, तो उन्होंने, नौकर ने बोला, भाई साहब फिर आप ही बताइए ना आपको क्या चाहिए और इनको क्या चाहिए। तो नौकर जो खड़ा हुआ था उसके साथ साथ कौन खड़ा हो गया, वो नाक से बोलने वाला, नाक से बोलने वाला खड़े होके क्या बोलता है, अब बताइए इंटरवल 5-10 मिनट का वक्त का होता है, उसके बाद फिर पिक्चर चालू हो जाती है। लेकिन ये दोनों मित्र बड़े मजाक के मूड में, नौकर के समझ में नहीं आया। उन्होंने फिर से उसको बोला, अटक अटक के बोलने वाले को, किसने बोला? ये नौकर ने फिर से बोला कि भाई साहब एक काम करिए, वो जो जो भाई साहब सामने हैं उनकी तो बात समझ में नहीं आ रही, वैसे तो आपकी भी समझ में नहीं आई, लेकिन अगर एक बार और बता देंगे तो मेरे समझ में आ जाएगा कि आपको आलू बनना चाहिए कि समोसा चाहिए कि क्या चाहिए। तो अटक अटक के बोलने वाला फिर मजाक के मूड में आ गया। उसने फौरन बोला, समझने की कोशिश करो भाई साहब, जो सुबह सुबह आप लोग कढ़ाई में तेल गरम करते हो, है ना, उसके बाद चने का आटा लेते हो, उसमें पालक की भाजी डालते हो, हरी मिर्ची डालते हो, नमक डालते हो, सोडा डालते हो और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें डाल के वो गोल गोल घुमा के वो ऐसा करके जब तेल में दें दें दें दें लाडो प्लेट। नौकर बोलता, भाई साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप जितना सब वो सब ठीक है लेकिन आप बाकी तो सब सही बोलते हो, लेकिन जिस शब्द को आपको बोलना चाहिए वहीं पे आप जाके सॉलिड हो जाते हो, ये बात गलत है, हैं? जरा फिर से आप बताइए, किसको बोला इसने? वो नाक से बोलने वाले को। वो फिर खड़ा हुआ, फिर उसने वही बात सब रिपीट की। कहता है वो, हमने कहा, नौकर बोलता, अरे बाप रे, इंटरवल तो गया भाई साहब, मेरे को बहुत नुकसान हो गया भाई साहब, आप मेरी दुकान में काहे को आए भाई साहब, काहे को आए भाई साहब।
4: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है, इसकी 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाना भारत के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियुगोंग इंडिया के 272 करोड़ रुपए लागत के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का उत्पादन होगा। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 436 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के अनुसार पूरे 8 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टरों की यह बड़ी भर्ती हुई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के तीसरे मुकाबले में कल भारत को इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज के आखिरी दो मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम।
2: महिला सभा सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को आपकी सखी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम सभी घर के काम करने के साथ साथ बाहर के भी सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन सखियों अभी भी आर्थिक निर्णय लेने, निवेश करने, टैक्स से जुड़े निर्णय लेने में कई बार हम अपने हस्बैंड, अपने पापा या घर के सदस्यों पर निर्भर हो जाती हैं। सखियों, यदि हम कमा रहे हैं या हाउसवाइफ घर में पैसा बचा रही हैं, तो उससे जुड़ी हर जानकारी, हर निर्णय में हमारी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना या पैसा बचाना ही ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही अपने पैसों को समझना, संभालना व सही उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। सखियों, हमें फाइनेंशियल मुद्दों पर भी अपनी राय बनानी होगी। इसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बैंकिंग की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, बैंक खाता कैसे खोलते हैं, चेक कैसे भरा जाता है या डिजिटल भुगतान कैसे किया जाता है। आज के डिजिटल युग में नेट बैंकिंग, कार्ड से पेमेंट करना, ये सब काम हमें आना चाहिए। हम हमेशा आय और व्यय का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखें, इससे हमें आर्थिक स्थिति समझने एवं बेहतर निर्णय लेने में आसानी होगी। और हाँ सखियों, वित्त से संबंधित सारे दस्तावेज को भी समझना और संभाल कर रखना आना चाहिए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, भुगतान रिकॉर्ड इत्यादि। टैक्स से संबंधित जानकारी भी हमें रखनी होगी, आयकर रिटर्न कैसे भरते हैं, किन खर्चों पर टैक्स से छूट मिलती है और अपनी आय को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तब हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सखियों, समय पर हमें बिलों का भुगतान करना चाहिए ताकि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे, जिससे भविष्य में लोन लेने में हमें आसानी होगी। खुद के लिए और पूरे फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना भी आज की ज़रूरत बन गया है। और कोशिश करें कि हम अपने या अपने घर की कुल इनकम का 50% घर के जरूरी खर्चे, 30% अपनी इच्छाओं और 20% भविष्य की बचत में निवेश करें। छोटी छोटी सेविंग भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड बनाकर देती हैं। सखियों, कमाने के साथ साथ हमें निवेश के फैसले भी लेने होंगे, ना कि घर के अन्य सदस्यों पर हम निर्भर हो जाएं। वर्तमान में निवेश के कई सुरक्षित व लाभदायक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बीमा, पेंशन स्कीम, SIP। इससे हम भविष्य की अपनी आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए सखियों, हम भी अपने वित्तीय व्यवहार को निखारें और अपने परिवार की मेहनत की कमाई को समझदारी से मैनेज करें।

0: सखियो, समय समय पर हम आपके लिए कहानी, काव्य पाठ, वार्ता लेकर आते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य पाठ। कवित्री हैं सुश्री भारती जैन। तो आइए सखियो, सुनते हैं ये काव्य पाठ।
1: नमस्कार, आज मैं आपके लिए कुछ गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ, सुनिएगा। हे आदि देव अच्युत अनंत

महती हर अभिलाषा हो निठुर नियति के ही अधीन, बदले सब कथ्य कथानक हैं प्रश्न चिन्ह में तरुणाई, मानक सब हुए अमानक हैं। आनंद कंद जिन क्षमता का विस्तारित कर दो।

जीवन सुर भित चंदन कर दो, घट घट में खुशियों के घट भर, ये मान सरोवर मन कर दो। हो धन्य धरा का ज्योतिर्मय, हो धन्य धरा का ज्योतिर्मय, हर दृश्य अलौकिक अनिया

से रजनी का तम घट जाता है, जैसे ज्ञानी की संगत से अज्ञान तिमिर हट जाता है, वैसे ही परम ईश मन की विगलित कर दो सब कुंठाएं, आमूल चूल परिवर्तित हों निर्मूल सभी शक शंकाएं, कि जैसे सूरज की किरणों से रजनी का तम घट जाता है, जैसे ज्ञानी की संगत से अज्ञान तिमिर हट जाता है, वैसे ही परम ईश मन की विगलित कर दो सब कुंठाएं, आमूल चूल परिवर्तित हों निर्मूल सभी शक शंकाएं, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसाते खुशियों की, चहुर दिखे भाईचारा जीवन की बगिया में प्रतिपल, बस बजे प्रेम का एक तारा, बस बजे प्रेम का एक तारा। और अंतिम पद देखें कि हो प्रेम प्रतिष्ठित हर घर में, नफरत डर से कांपे थर थर, हो प्रेम प्रतिष्ठित हर घर में, नफरत डर से कांपे थर थर, हो प्रेम सुधा से ही सिंचित चिंतन के चौराहे प्रभुवर, महिमा मंडित सम्मान रहे माटी का अक्षत मान रहे, और जब तक जीवन है धरती पर हर दिल में हिंदुस्तान रहे, हो राष्ट्र भक्ति ही परम धर्म, हो राष्ट्र भक्ति ही परम धर्म, जय हिंद हमारा।

की बगिया में प्रतिपल बस बजे प्रेम का एक तारा, बस बजे प्रेम का एक तारा, बस बजे प्रेम का एक तारा। इसी श्रृंखला में आगे का गीत है।

कर कर लूं, कुछ अधूरी चाहतों में मैं महकती शाम लिख दूं, कुछ अधूरी चाहतों में मैं महकती शाम लिख दूं, चांद तारे फूल खुशबू धड़कन।

समर्पित प्रीति की हर रीति को करनेह का चंदन समर्पित तन समर्पित मन समर्पित पावनी बंधन समर्पित दिव्य

0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: सखियों, अभी आपने सुना काव्य पाठ। कवित्री थी सुश्री भारती जैन। सखियों, हर मौसम खास होता है। उसमें बारिश का मौसम राहत और खुशी की लहर लेकर आता है। बारिश हमेशा पुरानी यादें और सुकून का एहसास लेकर आती हैं। सखियों, अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के अनुसार घर के साज सज्जा बदलने से न केवल घर का माहौल तरोताज़ा रहता है, बल्कि बदलते मौसम में आराम भी मिलता है। अभी चारों ओर हरियाली है, ऐसे में घर के बगीचे से फूलों को तोड़कर लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर फूलदान में सजाएं। जब आप फूलों से भरे गुलदस्ते देखेंगी ना, तो इससे आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाएगा। लिली, चमेली और गुलाब जैसे मधुर सुगंध वाले फूल किसी भी स्थान की सुंदरता बढ़ाने या उसे मनमोहक खुशबू से महकाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। सखियों, विंड चाइम्स घरों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं। उन्हें अपने बेडरूम स्पेस या लिविंग एरिया की खिड़कियों से लटका दें। इनकी आवाज़ से वातावरण में शांति और सुकून का संचार होता है। सखियों, बारिश में भारी पर्दे के कपड़े नमी को अवशोषित करते हैं और फिर एक अजीब सी स्मेल बनी रहती है। इसलिए इन दिनों हल्के रंग के लाइट पर्दे, जिससे हवा एवं रोशनी आसानी से प्रवेश कर सके। शिफॉन, नायलॉन, लिनन जैसे हवादार कपड़े घर में प्राकृतिक रोशनी आने देने के लिए एकदम सही रहेंगे, क्योंकि ये ताजी हवा को अंदर आने देंगे और हवादार माहौल बना रहेगा। साथ ही अपने घर की एंट्री पर एक ऑल वेदर प्रूफ डोरमेट बिछाए, ताकि बाहर से कोई भी आए अपने जूते चप्पल पोंछकर ही अंदर आए। बारिश का मौसम बहुत सुहाना होता है। ये अपने साथ लीकेज, सीलन भरी बदबू भी लाता है। इसलिए समय समय पर खिड़की दीवारों की जांच करें। यदि कुछ लीकेज हो तो वाटर प्रूफ टेप से तुरंत ठीक करवा लें। सखियों, हमें यकीन है आप अपने घर को ताज़ा रंगों और शांति से भरपूर चीज़ों से भरकर एक आरामदायक जगह बना ही लेंगे। साथ ही अपने घर को मानसून के लिए तैयार करना ना भूलें और बारिश के मौसम से अपने घर के उत्साह को किसी भी प्रकार से कम होने ना दें।

सखियों, आज के समय में स्वस्थ रहने के लिए मजबूत इम्यून सिस्टम होना बेहद ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम ही शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और अन्य संक्रमण से बचाने का काम करता है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमज़ोर होती है, तभी हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और शरीर को संक्रमण से लड़ने में कठिनाई होती है। सखियों, आप जो खाते हैं वह आपके स्वास्थ्य और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा खान पान आपको स्वस्थ रखने, बार बार बीमार पड़ने से बचने और हर दिन अच्छा महसूस करने में मदद करता है। कुछ आसान आदतें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती हैं। विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर भोजन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। सखियों, पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए दिन में 6 से 8 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएं। पैकेट बंद जूस या शीतल पेय से बचें, क्योंकि इनमें आमतौर पर शरीर की आवश्यकता से अधिक चीनी होती है। समय पर खाना खाना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि नियमित अंतराल पर भोजन करने से शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। नाश्ता छोड़ना या रात को बहुत देर से खाना खाना गलत है। ऐसा करने से पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। विटामिन्स और खनिजों से भरपूर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, पालक, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन का नियमित सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। अपने दैनिक आहार में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, दाल, अंडे, चिकन, मछली और मेवे को शामिल करें। सखियों, विटामिन ए, सी, डी और ई हमारे आहार में सुपर शक्तिशाली प्रतिरक्षा बूस्टर है। इसके लिए आप आम, पपीता, खरबूजे जैसे मौसमी फलों को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। सखियों, आपको अपनी पूरी जीवन शैली को रातों रात बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक आदत से शुरुआत करें, उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें और फिर आप अगली आदत की ओर बढ़ें। सखियों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी सखी नीलम को

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, आवश्यक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, 1:30 होने वाले हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे घनश्याम कुशवाहा के गाए लोकगीत।

घनश्याम कुशवाहा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन अभी आप सुन रहे थे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत आनंद मिलिंद का है और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब सुनवाते हैं परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: कुमार सानू की आवाज में परदेस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी ये जो गीत परदेस फिल्म का अभी आपने सुना, इस गीत की धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। इंडोनेशिया के प्रांबानन मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। केदारनाथ और महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान को भी उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स का जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुमांगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकवेटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है। अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम योजना में प्रदेश पांडुलिपि संकलन में देश में पहले नंबर पर है। टीकमगढ़ से जम्बूद्वीप का नक्शा और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी श्री भागवत गीता पांडुलिपि मिली है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान में साल करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी और 10,600 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। श्री शाह ने इसे सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारों से राज्यों के बीच विवाद तेजी से सुलझ रहे हैं। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली दो कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम में देश विदेश की कई अग्रणी कंपनियां शामिल होंगी। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगम ने अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। अन्य संस्थानों को 15 से 30 दिन में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भवनों में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और 2 सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 7वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सक्रिय है। पन्ना, छतरपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान चढ़ावे की गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच समिति बनाई गई है। कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष सीईओ बीएस सोलंकी हैं। आगरमालवा जिला पुलिस ने कल जिले भर के स्कूलों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर सेफ क्लिक 2.0 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी प्रकार से रायसेन में भी सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का समापन कल किया गया। नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रेल मंडल द्वारा टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जर्जर और जीर्ण शीर्ण भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCEOE भोपाल के दो कैनो खिलाड़ी एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह सक्तावत का चयन 2026 ICF कैनो स्प्रिंट व पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण

0: है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
0: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। जम्मू कश्मीर के

0: शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़ गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमरीका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर

0: उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं दिलवाले फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मिश्रा की आवाजों में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम का है। इस गीत को पसंद किया है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। साथ ही साथ ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश ठाकुर और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की।

दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। ये हमारे श्रोता है अनिल फड़वाड़े, सीमा, स्मिता, श्वेता, सारथी, पूजा, आरती, अमृत, तृप्ति, रूपाली और अमृता, ये है हमारे गुमाश्ता नगर इंदौर से हमें फरमाइश मिली है। साथ ही साथ दिल तो पागल है फिल्म के इसी गीत को पसंद किया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतिन बीरक और मीका बीरक के साथ ही साथ। ये पत्र है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से और पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा, मुस्तवा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं। इसे आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत उत्तम सिंह का है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और आज इस कार्यक्रम के साथ हूं मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा है, राम लक्ष्मण ने इसकी धुन बनाई है और आवाज़ SP बालासुब्रमण्यम की है। इस गीत को पसंद किया है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया और बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती माखीजा और पूरा माखीजा परिवार। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

एसपी बालासुब्रमण्यम की ही आवाज में आप सुनेंगे अगला गीत, जिसे पसंद किया है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। और इस गीत को सुनने के लिए हमें खत लिख भेजा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। और साथ ही साथ ये इन श्रोता का खत भी हम शामिल करते हैं, जो है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, ये सभी सुनना चाहते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में इसके बोल लिखे हैं देव कोहली ने, आवाज एस पी बालासुब्रमण्यम की।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत जतिन ललित का है। इस गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। ये फरमाइश है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश राशि और श्रीमती शीतल राजेश, और गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े और आरती जोंधड़े की।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत, जिसकी धुन बनाई थी जतिन ललित ने और गीत लिखा था समीर ने। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और अब इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है। अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली दो कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। और लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर चुका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम युववाणी। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत होगा 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र के योगदान से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा शाम 7:21 पर। रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे चर्चा का विषय है। रात 10 बजे सुनिए नाटक बंटवारा, जिसके लेखक है मुरलीधर बलवानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसमें आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व का राग हमीर में ख्याल गायन। ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

दोपहर की 3:02 और 25 सेकेंड्स हुए हैं। मीडिया में ऊपर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। DTH के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे घनश्याम कुशवाहा के गाए लोकगीत।

0: मानव स्वभाव ही कह लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का भी मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया
0: ज्यादा
1: ज्यादा। बिल्कुल
0: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, और क्या शिकायतें उनके मन में रही, इसके
1: बिल्कुल
0: बारे में।
1: बिल्कुल हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं,
0: बहुत सही
1: वरना
0: बात कही।
1: बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर
0: हाँ
1: कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर चौराहे पर छोड़कर अलग हो
0: बिल्कुल,
1: जाते हैं।
0: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे, लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
1: बिल्कुल। तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग कि किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं,
0: बिल्कुल,
1: है
0: और
1: ना।
0: साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी जो बहुत
1: अरे
0: फेमस है,
1: वाह,
0: कोटा डोरिया, उसके बारे में।
1: बिल्कुल ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है,
0: जी
1: और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है इस साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े
0: जी
1: कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो हैं कोटा डोरिया की साड़ी पहने हुए भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती हैं।
0: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है, और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए,
1: आए।
0: तो वो क्यों चाहती हैं, ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें,
1: अच्छा।
0: जिसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है, अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है, चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं, तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपने सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी,
1: तो
0: ये तो
1: गाना बड़ा
0: बहुत
1: अच्छा था, है ना?
0: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं,
0: क्या बात है।
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है,
0: अरे
1: उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है।
0: आहा,
1: सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन, जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहें, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती
0: क्या
1: रहें।
0: बात है, क्या बात है। यानी हमारी सखियों को, हमारे सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है
1: बिल्कुल, ये जो
0: ना।
1: और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर
0: कर
1: पाते हैं,
0: सकते।
1: हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे, अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और उद्घोषक जो खास तौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, तो
1: जी
0: हमारी श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं
1: जी
0: कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है
1: जी
0: जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का
1: जी
0: अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी अपनी
1: हाँ
0: तारीफों में उलझ गई हैं, है ना। तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए। हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा, अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना, असंतुलित लहजा जो है,
0: बिल्कुल
1: इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं
1: जी
0: तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो
1: जी
0: फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
1: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है, गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुकराना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
0: क्या बात
1: क्या
0: है।
1: बात है,
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा। धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियां और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है
1: और
0: ना।
1: इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज़्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते, हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीज़ें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते, लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नज़रिया है वो भी ख़राब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा, हम अक्सर करते हैं छोटी छोटी बातों पर शिकायत। अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदाई बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना कर दे कि भाई गाना नहीं सुनवा रही हैं सखी, सिर्फ बातें किए जा रही हैं। तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए। और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी
1: बिल्कुल
0: हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा। हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को,
1: जी,
0: उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो आपके पास हैं, ना कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि
0: बिल्कुल
1: हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा है।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज़्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते। लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता, हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना
1: इसी
0: चाहिए।
1: तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से

0: शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखती है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं। और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों सी महक फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है। तो शिकायत किस बात की, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं, ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्म पत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: बता देती है, लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी। ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना, यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
0: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना? तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं 18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के

0: महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास तौर पर जो मैसूर क्षेत्र है ना, वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया, जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुनाए गए जो आरामदायक कपड़ा था, इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं, जिन्हें खट कहा जाता है, आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल। और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा, ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई। और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा, जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था, और लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया।
0: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है, इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया, ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है, तो वहाँ की महिलाएं सीले शायद इसे ज्यादा पसंद करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और वहां जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं,
0: जी,
1: ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए,
0: और
1: जैसा कि
0: जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना, उसके दुपट्टे भी चल जाते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत
0: जी,
1: प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं, लाइट
0: और
1: शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत चॉइस
0: आजकल
1: है।
0: एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का जो चलन है, तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं, तो वहां कोटा डोरिया का दुपट्टा भी डाला
1: डाला जाता
0: जाता
1: है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में,
0: है।
1: साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है, ये
0: जी
1: भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी, बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम, और ये बहुत हवादार होता है, जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। ताना और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं, जिसे खट, अभी आपने बताया खट कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है। हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
0: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना, वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होता है ना, बहुत
1: बारीक
0: जो
1: काम होता
0: बारीक
1: है
0: काम होता
1: और
0: है।
1: थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें
0: जी,
1: टाइम लगता ही
0: और
1: है।
0: अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है,
0: जी
1: आप आम आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है, इससे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है, और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
0: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहाँ पर कोटा रोडिया साड़ियाँ ज़्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और
1: बिल्कुल
0: राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है, बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि
0: जी
1: बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये,
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहां बारिश नहीं है गर्मी है, वहां के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुंचा दी जाए।
1: हाँ।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं होगा।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, या उसकी सहायता की जाएगी, या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के 3 शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने 3 उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा
2: और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो। सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी, लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं जी, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
3: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
2: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना,
3: सही
2: कथनी और करनी में फर्क हो जाता है।
3: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नियत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देख, बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आँच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह ये हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आँच धीमा पर तलने में तेल पियेंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है, और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए 1 कप चावल को धोकर 1 घंटा भिगोएं। पानी को निथार कर चावल, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां, जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ हैं और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ हैं।
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल। लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपकी साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी।
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित निबंध है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेकर चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा

0: में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
0: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
0: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी बिल्कुल,
0: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से, उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं, एक तो है कुल्हड़ की चाय पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
0: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है, ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है। यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है, उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्या समझता हूँ, मैं क्या कहूँगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूँ। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहाँ भी संगतियाँ दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है, तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
0: आ जाता है।
1: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारे प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारे प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा, इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा हो रहा है, जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते
1: जी, जी।
0: हजारे प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है। ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें, तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले।

0: आपके हृदय को जोड़ता चले तो वही उसकी सीमा है।
1: रेड्डी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नज़र आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पल्वित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं।

0: तो वो जैन की यात्रा में मैं एक बार वहाँ के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुँच गया। तो जब वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे
1: जी
0: हैं। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूँ, इसके
1: जी
0: बराबर कोई नहीं
1: जी
0: है। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ, ना मैं वहाँ जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता,
1: जी
0: और
1: जी
0: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहाँ से यात्रा और कहाँ से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी
1: जी
0: कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है,
1: जी
0: और वो मुझे वहीं जा कर के मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है, उनकी उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी,
0: जी जी
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या
0: जी
1: सोचते हैं इसके बारे
0: ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने
1: में?
0: मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा नयन नयन बिनु बानी। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है, और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता
1: जी
0: हूँ। वो भले करें कि गिरा नयन नयन बिन बानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नयन बिन बानी नहीं है, नयन और बानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है।
1: जी
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज़ को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने
0: जी
1: के बाद लगता है कि कहीं
0: जी
1: ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब
0: जी
1: जाकर
0: जी
1: एक
0: जी
1: इतनी
0: जी
1: बड़ी बात कही जाती है।
0: जी
1: तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज़ उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अजयराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,
1: जी
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूँगा।
1: आई सुनते

0: क्या इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
1: जी।
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीज़ें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये हृदय पक्ष है। इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
2: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
2: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
2: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी,
2: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी
1: जी।
2: है। एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की,
2: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं। प्रिया, मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो। बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी,
2: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
2: मध्य क्षमा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबाधरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
2: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास, अंत

0: अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को।
1: जी,
0: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ। तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहाँ से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग्य मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग्य लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीज़ें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है, कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहाँ से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज़्यादा प्रिय है या ललित मत।
1: जी, तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: ये
1: हम समझ सकते हैं। जी, तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ, बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला
1: कभी भी, क्या बात है, फिल्म पगला कहीं का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात कर पाएंगे।
0: जी, हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे, जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिनी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के ये।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा
0: जी
1: कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाए, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद उन पर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फ़ोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
0: क्या बात है।
1: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब आप मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
0: जी।
1: तो विशेषांक निकला 120 पेज का, तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है।
0: जी।
1: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
0: जी जी जी।
1: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसको
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
1: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
0: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है।
1: जी।
0: लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ।
1: जी, 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़कर के हर विधा में लिखने वाले। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं।
0: जी,
1: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
0: बिल्कुल। तो रेड्डी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं।
1: जी, जी।
0: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिना चलिया रे, इसको सुनना चाहूंगा।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज़्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले। चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियाँ, चाहे वह विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने ज़माने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो इस संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा कि संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में यह भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
0: जी।
1: कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के, साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
0: जी,
1: कुछ नई चीज़ दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। इतने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए, खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा,
1: उनकी पुत्र वधू ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के

0: जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ।
1: जी
0: छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी
1: हैं,
0: जी हाँ जी
1: उसके बाद
0: जी
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
0: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी,
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरा
0: मेरे गीत
1: गीत
0: अमर
1: कर
0: कर
1: दो,
0: दो, ये मुझे बहुत पसंद
1: बहुत
0: है
1: सुंदर
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन
0: जी।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अभी शाम के ठीक 5 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें विदाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि शीघ्र ही लगभग 800 करोड़ की लागत से डेटा सेंटर में एआई, अत्याधुनिक तकनीकी एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत संचालित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए और प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त उत्कर्ष भार्गव और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है, आप भी किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के दौर में हमारी पढ़ाई में एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट की मदद से पूरा होता है, लेकिन दोस्तों इंटरनेट उपयोग करने की भी अपनी अलग चुनौतियां हैं। कई तरह के स्पैम, वायरस, गलत लिंक या मालवेयर सॉफ्टवेयर का भी सामना हमें इंटरनेट के उपयोग से करना पड़ता है। तो आज क्यों ना इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आगे बात करने से पहले क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

दोस्तों, तकनीकी युग में मानव जीवन को नई गति दी है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने संवाद, शिक्षा और अभिव्यक्ति के अनगिनत अवसर उपलब्ध कराए हैं, किंतु इन सुविधाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। उन्हीं में से एक है साइबर बुलिंग। दोस्तों, आज का युवा डिजिटल दुनिया का नागरिक है। उसकी पढ़ाई, दोस्ती, मनोरंजन और बातचीत काफ़ी हद तक इंटरनेट के माध्यम से होती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं साइबर बुलिंग क्या है। साधारण शब्दों में, इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को बार बार अपमानित करना, धमकाना, उसका मजाक उड़ाना या उसकी निजी जानकारी का दुरुपयोग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। दोस्तों, इसके कई तरीके हैं, जैसे फर्जी प्रोफाइल बनाना, अपमानजनक टिप्पणियाँ करना, निजी तस्वीरें साझा करना, धमकी भरे संदेश भेजना, झूठी अफवाह फैलाना और किसी व्यक्ति का उपहास करना। दोस्तों, पहले जहां उत्पीड़न केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित रहता था, वहीं आज इंटरनेट के कारण यह 24 घंटे कहीं भी संभव हो गया है। यही कारण है कि साइबर बुलिंग का प्रभाव अधिक गहरा होता है। हमारे शास्त्रों में सदैव संयमित वाणी और मर्यादित आचरण का संदेश दिया है। संत कबीर का यह दोहा आज भी उतना ही सार्थक है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। डिजिटल युग में भी यह शिक्षा हमारे लिए मार्गदर्शक है। दोस्तों, साइबर बुलिंग केवल तकनीकी समस्या नहीं, यह सामाजिक, मानसिक और नैतिक चुनौती भी है। इसके प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास, शिक्षा और पारिवारिक जीवन तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि साइबर बुलिंग का युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, किसी के कठोर शब्दों का घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा होता है। जब यही व्यवहार इंटरनेट के माध्यम से बार बार होता है, तो उसका प्रभाव और भी गंभीर होता है। आज साइबर बुलिंग के कारण युवाओं में कई सारी समस्याएं देखी जा रही हैं, और इसके कारण हैं तनाव और चिंता बढ़ सकती है, आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है तथा सामाजिक अलगाव की भावना भी हो सकती है। कई युवा अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं करते। वे सोचते हैं कि शायद यह केवल मजाक है या फिर शिकायत करने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन याद रखिए, चुप्पी समाधान नहीं, जागरूकता ही सुरक्षा है। समस्या को स्वीकार करना और सहायता मांगना साहस का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। दोस्तों, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो डिजिटल माध्यमों में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पहचान को छिपाना, धोखाधड़ी करना, अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार। यदि कोई युवा साइबर बुलिंग का शिकार हो जाए तो क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहले घबराए नहीं। दूसरा, सभी डिजिटल प्रमाण सुरक्षित रखें, जैसे स्क्रीनशॉट, संदेश, ईमेल या प्रोफाइल लिंक। तीसरा, संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट और ब्लॉक करें। चौथा, अपने माता पिता, शिक्षक या विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी दें और आवश्यकता पड़ने पर साइबर अपराध या साइबर सेल और पुलिस से संपर्क करें। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल नागरिकों को

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान करता है। तकनीक का सही उपयोग विकास का मार्ग बनता है और उसका दुरुपयोग समाज को पीड़ा देता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। कानून हमें सुरक्षा देता है, लेकिन समाज और परिवार हमें संस्कार देते हैं। जब दोनों साथ चलते हैं, तभी सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण होता है। दोस्तों, इस तरह के साइबर अपराधों से लड़ने के तरीकों और इसके निराकरण पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी समय है एक प्यारे से गीत का।

दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस चुनौती का समाधान केवल कानून से नहीं बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज के सामूहिक प्रयास से संभव है। परिवार बच्चे का पहला विद्यालय होता है। माता पिता यदि बच्चों के साथ खुलकर संवाद करें, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों में रुचि लें और उन्हें सही गलत का विवेक सिखाएं, तो अनेक समस्याओं को प्रारंभ में ही रोका जा सकता है। बच्चों को यह विश्वास होना चाहिए कि किसी भी कठिन परिस्थिति में उनका परिवार उनके साथ है। विश्वास और संवाद, यही है सुरक्षित परिवार का आधार। दोस्तों, कोविड काल के बाद इंटरनेट का उपयोग बच्चों को भी करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए आज आवश्यकता है कि विद्यालयों को साइबर सुरक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए। डिजिटल नैतिकताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाना चाहिए तथा संवेदनशील और सम्मानजनक ऑनलाइन व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमें खुद भी यह याद रखना चाहिए कि हम किसी की निजता का सम्मान करें, बिना अनुमति के किसी की तस्वीर या वीडियो साझा न करें, अपमानजनक टिप्पणियों से बचें, फर्जी समाचारों को आगे न बढ़ाएं और यदि कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो तो उसका सहयोग करें। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था, किसी समाज की महानता इस बात से आंकी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर और पीड़ित लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। डिजिटल समाज भी इस सिद्धांत से अलग नहीं है। यदि हम इंटरनेट को सम्मान, सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें तो तकनीक मानवता के विश्वास का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। इसीलिए क्लिक करने से पहले सोचें, पोस्ट करने से पहले समझें और किसी को आहत करने से पहले स्वयं को उसकी जगह रख कर देखें। दोस्तों, तकनीक के इस युग में ज्ञान के साथ विवेक, अधिकारों के साथ कर्तव्य और स्वतंत्रता के साथ संवेदनशीलता का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऐसा डिजिटल भारत बनाएं जहां प्रत्येक युवा सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करें।

दोस्तों, आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको साइबर बुलिंग की समस्या, उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के महत्व के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहें। हम कल नई बातों को और गीतों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
2: आकाशवाणी है ना।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत क्रिमिनल फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ है, गीत इंदिवर का, संगीत MM करीम का।

लीजिए अब सुनिए रोग फिल्म का गीत के की आवाज़ में। गीत नीलेश मिश्रा का, धुन बनाई है MM करीम ने।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए गुलजार का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म है गुलामी और इस गीत में आवाज़ लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। इस समय शाम के 5:55 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, सबसे पहले सुनिए हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। सबसे पहले दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए। आज रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। अब सुनिए आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद ठीक 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत में आज आनंद लीजिएगा सीमा शुक्ला के गाए कुछ बुंदेली लोकगीतों का। शाम 6:45 पर सुगम संगीत में आज सुनिएगा दिलीप कोरी के गाए कुछ सुगम संगीत रचना। 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ता क्रम में आज आप सुनेंगे मक्का और मूंग की अंतर्वर्तीय खेती विषय पर श्री कृष्ण शंकर त्रिपाठी से बातचीत।

शाम 8:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी।

0: श्रोताओं, ये अब आपको अवगत करा दें हमारे कल के कुछ खास कार्यक्रमों से। सबसे पहले दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाने वाले हमारे कल के कार्यक्रमों की जानकारी सुनिए। सुबह 10:10 पर विश्व दर्पण, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 10 क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। अब सुनिए कल भोपाल से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, सुबह 9:30 पर रूपक, 10 जिले की चिट्ठी और दिन में 10:58 से आप आनंद लेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों का। रात 8 सुनिएगा सुर्खियों में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित करेंगे।
1: प्रवेश मेले का आयोजन कर रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, शाम के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओ इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं।
2: आज
3: हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
4: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो

0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है।

0: उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लोक संगीत आज इस कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए सीमा शुक्ला के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर। शाम के ठीक 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं दिलीप कोरी।

0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों बाद ठीक 7 बजे हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

0: night tomorrow Indian time. Norway, England, Spain, Belgium, Argentina and Switzerland have also booked their places in the last eight. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पूरी कर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। और दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो को लेकर की समीक्षा, कहा अच्छी बारिश से वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या घटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई दी। इस दौरे में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों से जुड़े रक्षा समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योग्याकार्ता स्थित करीब 1000 साल पुराने परम्बानंद मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वड़नगर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ धाम, उज्जैन महाकाल लोक के बाद अब परम्बानंद मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वे भुवनेश्वर में समुद्री मत्स्य संसाधनों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ओयूटी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े दस्तावेज का लोकार्पण भी होगा। इसके बाद वे नाइसर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह खोरधा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित विवाद सुलझ गया है, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। वहीं उज्जैन के निकट डोंगला वेदशाला के विकास कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से नगर वन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।
2: पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है, वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी CSR स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी, उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रति वर्ष 5 सालों तक उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है।
3: इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का लोकार्पण, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हवाई अड्डों की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ ये बैठक की। श्री शाह ने सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्सरे ट्रे सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। एरो ब्रिज और बैगेज ड्रॉप सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी राज्यों में विदेशी पंजीकरण कार्यालय शुरू होंगे। अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर जल्द आवर्जन जांच चौकी शुरू करने को भी कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में वर्षा की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के प्रभाव पर हुई समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने बताया कि जून में 33% बारिश की कमी थी, जो जुलाई में घटकर 24% रह गई है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 350 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से कम है। मंत्री ने किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है।
5: अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है, उस पर लगातार हमारी नजर है। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है, और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे, उनकी संख्या घटकर अब 178 रह गई है। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: धार वन मंडल ने जनवरी से मई 2026 के बीच वन भूमि संरक्षण अभियान चलाकर करीब 590 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सबसे ज्यादा जमीन बाग परिक्षेत्र में छुड़ाई गई है, जिसके बाद धार, टांडा, मांडव, सरदारपुर, कुक्षी और धामनोद का नंबर आता है। इस मुक्त कराई गई जमीन पर अब सागौन के पौधे लगाकर पुनर्वनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कामकाज की समीक्षा की। CEO आयुष्मान अरविंद कुमार शाह ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 5,86,00,000 आभा ID बनाई जा चुकी हैं, जबकि लगभग 20,000 अस्पताल और 18,000 डॉक्टर नर्स डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के 533 अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर सुविधा से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा OPD टोकन जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। यह हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राजधानी भोपाल में दवा दुकानों पर सख्ती की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स की अचानक जांच की। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 32 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने वाले 2 स्टोर्स का लाइसेंस रद्द किया गया। डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा बेचने पर 1 स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। इसके अलावा 8 स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर 21 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से 2 कैनो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह शक्तावत अब भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। दोनों खिलाड़ी 2026 ICF कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये प्रतियोगिता 9 से 12 जुलाई तक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होगी। कैनो स्प्रिंट एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ा है, जिसमें एथलीट शांत या समतल पानी पर विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों में एक सीधी रेखा में कम दूरी की रेस लगाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर सभी बेड पर बच्चों को भर्ती करने और फायर सेफ्टी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय शिक्षा दिवस पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चरित्र निर्माण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन नागानंद नाटक की पृष्ठभूमि और रस सिद्धांत पर व्याख्यान हुआ। देवास जिला चिकित्सालय में विश्व क्लब फुट माह के तहत जनजात पैर के तिरछेपन से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। अगरमालवा कलेक्टर ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले 10

तक सह स्टॉप डायरिया अभियान को गंभीरता और आपसी समन्वय से संचालित करने के निर्देश दिए। सीहोर में सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत आज भैरुंदा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में विद्यार्थियों को रोजगार परक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए कई नवाचारी योजनाओं

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनवे वारे सभी किसान भैया बहनन से मधुबंती बिन्ना की राम राम। भैया आरो आज बड़े दिनन के बाद हमें त्यावे को टाइम मिलो, कैसे खेती किसानी के इतनो मुझको काम शुरू हो गाओ कि टाइम ही नहीं मिले। ऐसो लगत कि जे दिन कभी बढ़ा जात तो कभी संझा बिरिया हो जात और कभी रात हो जात, फिर लगत कि को कहाँ जाए और कौन से मिले और कौन से बतकाव करें। अब भैया जब इतने आने हैं तो सो एक हमारे दिमाग में खबर हो आई कि देखो अबे तो अपनी खेती किसानी को काम चलो और हमारे भैया रन ने कछु कछु ने तो धान की जन पौध की तैयारी है बा, पौध तैयारी के लाने उनने बीज डाल दा हुई है, पौध बनवे बारिश हुई हुई है और कोनों की पौध निकरबो अभी शुरू भई हुई है। तो भैया देखो अपन को खेत तैयार करने हैं, फिर उसके बाद अपन अपनी किसानी को काम देखें। लेकिन कलई की बात ले लो तुम हमसे कि हम ठाड़े हते अपने घर के दौरे में और बाहर जब ठाड़े तो बाहर से तो इतने लोग निकलते हैं, का बताएं, हर को उसे राम राम होए, हर को उसे बातचीत होए, सभी कछु होते हैं। सो भैया होते से चली आ रही हमारी भौजी, भौजी को बे हमारी कुसुम कली भौजी है ना, अरे बेकुसुम कली उनकी मौड़ी को नाम का अच्छो सो नाम है महक की मम्मी बा निकली और हाथ में भैया अपने गुड़ी मुड़ी कछु पुरजा सो दवाएँ हती और एकदम गदबद दें भाई चली जा रही। हमने उन्हें टेर लगाई कि काय भौजी कितने चली, तो पहले तो उन्हें हमारी बात को अनसुनी कर दी, अनसुनी कह लो कि भैया उन्हें सुनी ना हुई है, अब जी तो अपनी अपनी समझ है, हमें लगो कि उन्हें अनसुनी करी और वे कह रहे हैं कि हम सुना ही नहीं पाए। तो हमने जब उनसे कही तो उन्होंने कहा बताओ जी बताओ भौजी तुम सवेरे से गदबद कितने दे पड़ी हो, तो बोले अरे गदबद नहीं दे पड़े हमें कछु काम है वही के काने जा रहे हैं। तो हमने कहा इतने सवेरे से, बोले हाओ, हमने कहा जा बताओ जो मुट्ठी में का दबाएँ पुरजा सो, बोले अरे पुरजा नोई बिन्ना। तो हमने कहा दिखाओ, तो सुबिन ने हमें मुट्ठी दिखाई, हमने कही काहे जब मुट्ठी में पुरजा नोई जी तो तुम खर्रा पकड़े, सो बोली हाओ खर्रा ही है। तो हमने कहा है काय को खर्रा, तो बोली अरे हम जा रहे बिजली को बिल जमा करवे, अब अंग्रेजी में जाने काका लिखो है बा हमें तो कछु समझ ही में से नहीं आए और तुम्हें कछु समझ में आ जाए सो हमें बता दो कि का लिखो है। सो भैया हमने उनको जो उनको कगजा लें थी वह हाथ में लाओ, सो हाथ में जब लाओ तो हमने जब उनको बिल देखो बिजली को सो हम तो सक पकाने रह गए, तो ठैया बिल। तो हमने कही भौजी जा बताओ तुम आओ बिल तो काय आओ भैया। सुबह बोली हमसे कि अरे अब देखो कछु काम तो बिना बिजली के होए नहीं, तनक मनक पंखा है बे बिजली से चलें। हमने कहा जा तो बिल्कुल साँची बात है, बिजली को पंखा इशारे से चलत है। तो बोले बिल्कुल बिजली को पंखा इशारे से चलत है, तो बिना पंखा के तो कछु होए नहीं और अबे तो कैसी गर्मी पड़ रही कि गर्मी के मारे हलाकान मची हती, अब तनक मनक ठंडा होगा कैसे बदरा बरसन लगे। हमने कही हाओ भौजी, और बोले ऊपर से खेती किसानी की जो अपनी मशीन है बस वही बिजली से चलें, ऐसो घर को कौन सा उपकरण नहीं है जो बिजली से नहीं चले। तो भाई बिजली जब अपन जलाते हैं तो बिल सोई देने पड़े, भौजी ने हमसे जा बात कही। तो हमने कही जा तो तुम साँची कह रही भौजी कि बिजली तो देने पड़े और बिजली को बिल चुकाने पड़े, पर आजकल तो अपने तो इतनी इतनी सुविधाएं हो गई तुम्हें पतो नहीं का। तो बोले कैसी सुविधाएं हो गई, बिल तो जमा करने ही पड़े हमें। हमने कहा भौजी तुम्हें पतो नहीं का इतनी उम्दा

व्यवस्था चल रही है, अपनी सरकार ने चलाई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जगह जगह वो सोलर पैनल से कहा उदबे लग रहे और अपना रुपया पैसा सोई नहीं लगने, और संगे संगे अपन को बिजली सोई मुफ्त की मिलत है, तुम भाई लगवा लो। तो बोले अरे हम कितने लगवा भी, हमारे ते कहाँ जगह है। हमने कही तो बड्डो तो तुम मकान बनाए, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमें बिजली को हम सोलर पैनल से भी कितने लगवाएं, बढ़िया अच्छे छत पर लगवा लो, जितने जो छत को तुम्हें उपयोग नहीं करने, पानी की टंकियाँ धरें वो पे लगवा लो, नहीं तो तुम्हारे तो इतनी बड़ी बाड़ी है वह बाड़ी में लगवा लो, चार पांच छैया खंबा गड़ा थे उनके ऊपर वह पलेट सी तन जात है, तो बस वही पलेट तनवा लो और ऊपर से अपनी बिजली बनाओ। तो बोली जा बात तो सांची कही, अब जी करे को। हमने कहा करे को भैया से बता देने। तो बोले अरे हम ना बतावी भी, हमसे कहने लगी, बोले अरे हम ना बतावी तुम्हें ही बताइयो कैसे, भैया हमारी तो कछु सुने नहीं, ऊपर से हम कहें तो बोले कि अरे बड़ो ज्ञान ले आई, पता नहीं कि तैसे ज्ञान ले आई और हमें बता रही, तुम कहो तो बेमान ले हैं। तो हमने कही ठीक है भौजी, हम तुम आओ जी काम करते हैं। हमने कहा देखो भौजी, वो हमसे बोली एकदम से तपाक से कि बिना जा बताओ, मान लो हमने लगवा ली बस सोलर पैनल सी कहा उत, सो उसे हमें फ़ायदा का है। हमने कि अरे कैसे नहीं है फ़ायदा तुम्हें, कितो फ़ायदा, बिजली को बिल देने पड़त, अबे सोलर पैनल लग जाए तो बिजली को बिल नहीं देने पड़े, तुम्हारी मुफ्त की बिजली तुम ही बना पाओ, अपनी बिजली अपन स्वयं बना लेवे, ऊपर से सूरज भगवान की रोशनी से बनाते तो उनको एक पैसा नहीं लगने, और सबसे बड़ी बात जा है कि उनको लगवा के बेच के लाने अपन को सरकार से सब्सिडी सोई मिलत है, अपनों कछु पैसा लगाते लेकिन बाकी को पैसा सरकार सोई देते, बा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात जाए कि जा बा में टंटो नहीं रहेगी, बिजली चली गई चार दिना नहीं आ रही तो अपन बैठे हैं बिना कछु काम करें, बिजली नहीं है उसे बिजली नहीं जाए, वह तो अपनी खुदाई की बिजली है। और सबसे बड़ी बात जा है कि जितनी अपन को बिजली को उपयोग करने है बातों अपन कर ही लेते हैं, और अपने जो सोलर पैनल से बिजली ज़्यादा बन जात है वह अपन से बिजली विभाग वाले का सरकार का भी अपन से वह बिजली खरीद लेते हैं और उल्टे अपन को पैसा देते हैं, अपन को उनके पैसा नहीं देने, वह बिजली को अपन बेच के उनसे पैसा ले लेते हैं, जेत तो बड़ो फायदा होगा, जगह अपनी सूरज भगवान की रोशनी, बस वह अपन को पलेटें लगवाने हैं बस अपनी छत पे, वह लगवा लो फिर काहे को बिजली को बिल चुकाने। बोले जा तो तुमने सांची कही। हमने कही बस अबे जा ई बार तुम बिजली को बिल जमा कर आओ, हम भैया से कल बात कर ले भी। सो भैया हम तो जे कह रहे जैसे हमने कुसुम कली भाभी को बताई वैसे ही हम आपसे बताए दे रहे हैं कि जौन भैया रन के थे बिजली को बहुत खपत है और बहुत अपन बिजली को उपयोग कर रहे, देखो सभी घरन में होते हैं कोई भी उपकरण बिना बिजली के नहीं चले, अगर अपने पास व्यवस्था है अच्छी खासी तो अपन सोलर पैनल लगवा सकते हैं, और हमारे किसान भैया रहे तो बिल्कुल लगवा सकते हैं, उन्हें बड़ो फायदा है, और अपन को आर्थिक जो ना अपन तंगी झेलते हैं बिजली को बिल जमा करवे में उनको सामना नहीं करना पड़े। अब बात तो मुतकी हो गई, हमारे पास इतनों खजानों हैं बातन को कि हम का नहीं बता देवे आपको, पर आज हमारी जो हमारे संगे जिज्जी हरे बिन्ना हरे आई हैं, ब्याह बरातन को टाइम तो चल रहा हो, और ऊपर से बे औरें गई थी कहूँ बुलौआ में, अब बुलौआ में से बे आ रही थी सो उनने देख लो कि बिन्ना चली जा रही हैं अपनी चौपाल में, तो हम काहे ना चले, तो हमने उनसे सोई कह दी भैया हम जा रहे सो तुम ही चलो, उतर जाके कछु सजा दो हमारी चौपाल में जाके, सो बे औरें आई हैं तो उमदा से उनसे अपन ब्याहों को गीत सुनते हैं, तो बढ़िया उमदा आप भी सुनो और हम भी सुने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ तो भैया आ रहा हूँ। देखो अब आपने उमदा से एक विभागीय सो ही सुन लो। अब हमारी एक बात और सुनो, अपन जब खेती किसानी को काम करते हैं तो अपन का सोचते हैं कि अपन को एक संगे एक नहीं दो ठैया तीन ठैया चीज़ें अपन जब लगाते हैं तो अपन को आर्थिक स्थिति में सुधार सो ही आते हैं। एक से एक पैसा से दो पैसा से चार पैसा को अपन को जब लाभ मिले ना तो बहुत अच्छा लगते हैं अपन को। तो ऐसी अपनी खेती किसानी में जब अपन एक तरह की फसल लेते हैं तो आमदनी कछु और हुई है, और जब एक के संगे और दूसरी फसलें लेते हैं तो अपन को आमदनी दुगनी हुई है। तो आज हमारी चौपाल में जो भैया हैं श्री कृष्ण शंकर त्रिपाठी भैया, वे अपन को ऐसी कछु जानकारी दे रहे हैं, और ये जानकारी अपन को दे रहे हैं कि मक्का और मूंग की अंतर्वर्तीय खेती के बारे में। तो अपन इनसे ये जानकारी सुनते हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपन विपिन यादव भैया।
2: किसान भाई बहनों राम राम। अक्सर हम ये देखते हैं कि जिन किसान बहनों भाइयों ने एक फसल ली होती है उनका जोखिम बढ़ा रहता है अगर मौसम बदलता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक बंधु हमेशा बताया करते हैं कि आप एक से अधिक फसल लें, जिसमें हम अंतर्वर्ती खेती करके अपना जोखिम कम कर सकते हैं और लाभ भी बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में आज हम ले रहे हैं मक्का और मूंग की अंतर्वर्ती खेती, और इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं श्री कृष्ण शंकर त्रिपाठी जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। कृष्ण शंकर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: मक्का और मूंग की अंतर्वर्ती हम खेती करना चाह रहे हैं
3: जी,
2: तो ये हमें आज बताएं आप।
3: अगर हम देखें कि जो हमारा जबलपुर रीजन है
2: जी,
3: ये मक्के के लिए काफी फेमस है, तो यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ की जो जलवायु है वह मक्के के लिए और मूंग के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है
2: जी। जी,
3: किसान प्रायः एक साथ पूरे खेत में मक्का लगा देता है, और किसी कारणवश अगर ज्यादा वर्षा हुई या ज्यादा सूखा पड़ा तो दोनों के लिए सेंसिटिव होती है मक्का की फसल
2: जी। जी,
3: तो उसके कारण उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। तो मक्का के साथ प्रायः बहुत सारी आप अंतर्वर्ती फसलें ले सकते हैं, जिसमें उड़द है, मूंग है, सोयाबीन है, पर हम यहाँ पर देखेंगे कि मूंग ही क्यों। तो देखा जाए तो मूंग इसलिए क्योंकि इसकी जो अवधि होती है वह कम होती है, लगभग 55 से 60 या 65 दिन, यह डिपेंड करता है आपकी किस्मों पर
2: जी।
3: और उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इसकी जलधारण क्षमता सोयाबीन की अपेक्षा काफी कम है, तो अगर आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम है तब भी आप इसको आसानी से उगा सकते हैं
2: जी। जी, जी।
3: आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी मिट्टी कैसी है
2: जी।
3: अगर आपकी मिट्टी दोमट बलुई दोमट है तो काफी अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। सबसे अच्छा इसका जो समय होता है जुलाई का पहला सप्ताह। अगर हम 2 से 3 गहरी जुताई करेंगे, उसके बाद उथली जुताई करेंगे, तो हमारी काफी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी, और उसकी जो अवस्था है जो उसकी खेती करने के लिए प्रायः चाहिए, रंध्रावकाश उसमें बराबर मेंटेन होनी चाहिए, वह प्रायः उसमें उपलब्धता बढ़ जाएगी। अगर हम देखें मक्के की, तो मक्का जो होता है 7 से 8 किलोग्राम पर एकड़, या यूं कहें कि 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर है, वह आप इसको प्रायः ले सकते हैं
2: बिल्कुल।
3: उसके साथ अगर आप मूंग ले रहे हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या यूं कहें 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं।
2: तो मक्का और मूंग की जो अंतर्वर्ती फसल के बारे में आप बता रहे हैं, इसकी खेती के समय सावधानियां क्या क्या रखेंगे किसान बहन भाई?
3: सबसे मेन इसमें सावधानी ये रखनी होती है कि इनके जो स्पेसिंग होती है, इनके पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी
2: जी,
3: ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी अंतर्वर्ती फसल के लिए। मक्के की फसल की बात करें तो प्रायः 60x20 मतलब 60 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर उसकी स्पेसिंग होती है। अगर हम अंतर्वर्ती फसलें लगा रहे हैं तो इसकी दूरी को हमें 45 से 50 सेंटीमीटर करना चाहिए, और उधर जो है तो 15 सेंटीमीटर मतलब 45x15 सेंटीमीटर हम मक्के में अपनाएंगे ये स्पेसिंग। और अगर हम बात करें मूंग में, तो मूंग के लिए हमें 30x10 की स्पेसिंग
2: जी, मतलब कि 45 सेंटीमीटर मक्के में हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें
3: जी,
2: और पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें
3: बिल्कुल।
2: उसी तरह से मूंग में हम 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें
3: जी। इसका रेशियो क्या रखा जाता है, 2:2, मतलब अगर आप दो लाइन मक्के की लगा रहे हैं तो उसके बाद दो लाइन आप मूंग की लगाइए, ऐसा करके आप प्राय 1 एकड़ में यह पूरी खेती कर सकते हैं।
2: जी जी, क्योंकि हम मक्का भी लगा रहे हैं मूंग भी लगा रहे हैं, तो क्या दोनों में जो खाद और उर्वरक यानी कि पोषक तत्व अलग अलग देना होगा?
3: जी नहीं, मक्का एक अनाज वाली फसल है तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है, और वहीं हम बात करें कि मूंग जो होती है ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके कारण यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जिसके कारण इसको नाइट्रोजन अलग से देना नहीं पड़ता, बल्कि यह मक्के के लिए ही उपलब्ध अलग से नाइट्रोजन करा देती है, जिसके कारण यूरिया की जो मात्रा मक्के में लगती है वो भी कम हो जाती है, और उसके अलावा जो हम मक्के को फॉस्फोरस प्रदान करते हैं वही फॉस्फोरस हमारी मूंग फसल के लिए पर्याप्त होती है।
2: क्या बात है, मतलब कि हमने एक ही खर्चे में दो फसल में पोषण दे दिया।
3: जी जी जी, आपको पता है कि मक्का की जो फसल होती है 100 से 110 दिन की फसल है
2: जी,
3: वहीं अगर हम मूंग फसल की बात करें तो लगभग 55 से 60 दिन की फसल है
2: जी,
3: तो दोनों में जो दिनों का गैप है वो लगभग 30 से 40 दिनों का है, तो दोनों में कंपटीशन लगभग अलग अलग है। जो मक्का होती है वह C4 फसल होती है, कहने का मतलब ये सूर्य के प्रकाश को सबसे ज्यादा यूज करती है, उसके अलावा जो प्रकाश बचता है वह जो उसकी स्पेसिंग जहां उसकी खाली जगह है वहां जाएगा, अगर वहां मूंग की फसल लगी है तो वह उस सूर्य के प्रकाश को पूरा उपयोग करेगी, उसके कारण जो हमारे फलियां हैं या हमारा पौधा है वह तंदुरुस्त रहेगा और उसके कारण उत्पादन काफी अच्छा होगा।
2: जो खरपतवार है या अन्य व्याधियां हैं जैसे कीट हैं रोग हैं, ये तो दोनों फसल के लिए अलग अलग हैं और साथ ही इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनका नियंत्रण कैसे करेंगे?
3: अगर आप अंतर्वर्ती फसल कर रहे हैं तो लगभग आपका 70-80% तक जो आपका खरपतवार नियंत्रण है वो ऑलरेडी हो जाता है।
2: क्या
3: ऐसा
2: है?
3: क्यों? क्योंकि जो खाली जगह पड़ी होती है वहां मूंग की फसल आपने अगर लगा दी तो नीचे जो आपके खरपतवार के बीज पड़े हैं उनको उठने का समय ही नहीं मिलता है।
2: बहुत अच्छी बात।
3: एक सावधानी मैं किसान भाइयों को बता देना चाहूंगा कि जो मक्के के जो खरपतवार नाशी होते हैं इनको अगर आप 20 से 25 दिन में उपयोग करेंगे तो इसके कारण मूंग की फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।
2: अच्छा।
3: और अगर हम जो मूंग की फसल में इमजाथाइपर जैसे रासायनिक खरपतवार नाशी का यूज करते हैं तो उससे मक्के की फसल के लिए हानिकारक होगा। तो प्रायः किसानों को यह अपनाना है कि 80% तक तो आपके खरपतवार आएंगे ही नहीं, पर अगर किसी कारण बस 10-20% अगर आते हैं तो आप प्रायः हाथ से निदाई गुड़ाई करके आसानी से उसको हटा सकते हैं।
2: कृष्ण शंकर जी, अब बात करते हैं दूसरी व्याधियां जो हैं
3: जी,
2: कीट और रोग, उनके बारे में आपका मार्गदर्शन हम चाहेंगे।
3: प्रायः यह होता है कि जब खरपतवार में कीट और व्याधि जो होती है वो अपना घर बनाते हैं, पर अगर वो उगे ही नहीं तो कीट और व्याधि अपना घर कहां से बनाएंगे
2: जी।
3: तो इस कारण कीट व्याधि भी लगभग 30-40% कम आती है, पर अगर आती है तो जिसमें मक्के में मुख्य रूप से होता है तना छेदक और पत्ती छेदक, जिसके लिए आप मार्केट में फिप्रोनिल जैसा कीटनाशक या कि इमडा क्लोरोपिड जैसे जो कि आपकी सफेद मक्खी आती है माहू आती है इनके लिए आप उपयोग कर सकते हैं।
2: और रोगों की बात करें तो
3: हम बात करें मूंग की तो सबसे बड़ी बीमारी अगर देखी जाती है तो येलो वेन मोजेक मतलब पीला मोजेक, उसमें वायरस जो होता है उसके कारण पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती हैं और प्रायः लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपके पूरे खेत को वह लगभग 80-90% तक उसको खत्म कर देती हैं। इसलिए अगर किसान भाई प्रतिरोधी किस्मों का चयन करेंगे जैसे तो मूंग के लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा विराट और शिखा ये दो किस्में बहुत ज्यादा चल रही हैं, जिसमें विराट जो होती है 52-55 दिन की होती है और जो शिखा होती है वह 60-65 दिन की होती है, और दोनों ही पीला मोजेक के लिए प्रतिरोधी हैं। अगर आपका कभी आता भी है कोई रोग तो उसके लिए आप इमडा क्लोरोपिड, क्योंकि इसका जो वाहक होता है वो सफेद मक्खी होती है और इसको किल करने के लिए इसको खत्म करने के लिए हम इमडा क्लोरोपिड 70% WP वेटेबल पाउडर जो होता है उसका उपयोग करेंगे, जिसके कारण सफेद मक्खी खत्म होगी और वो एक जगह से दूसरी जगह उस रोग को नहीं ले जाएगी।
2: और मक्के में भी रोग आते हैं क्या?
3: जी बिल्कुल, मक्के में अगर देखा जाए प्रायः तो व्हाइट वर्ड जो एक डिसऑर्डर की तरह होता है जो कि जिंक की कमी से होता है, अगर हम जिंक सल्फेट यूज करेंगे मक्के में तो आसानी से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रायः देखा जाता है कि मक्के में कीट का अटैक ज्यादा होता है जो कि तना छेदक और पत्ती छेदक होते हैं, प्रायः इसमें कोई बीमारी ज्यादा नहीं आती, बीमारी ज्यादा मूंग की फसल में आती है।
2: जी जी जी। कृष्ण शंकर जी, मक्के की भी प्रजातियां आप बता दें जैसे कि आपने मूंग की प्रजातियां बताई।
3: बिल्कुल, मक्के की जनरली हमारे जबलपुर रीजन में 2 वेराइटी जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से रिलीज की गई है, तो उसमें जवाहर मक्का 12 और जवाहर मक्का 216। जो जवाहर मक्का 12 होता है ये लगभग 70 से 80 दिन की फसल है, और जो जवाहर मेज या मक्का कहें ये लगभग 100 दिन का होता है, जो कि किसानों के एरिया और मिट्टी और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि अगर आपके पास पानी की उपलब्धता कम है तो आप जवाहर मेज 12 अपनाएं, अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है तो जवाहर मेज 216 अपनाएं।
2: जी, यदि कुछ शेष रह गया हो जो कि इन दोनों फसलों की अंतर्वर्ती खेती में बहुत आवश्यक हो और हम उस पर बातचीत ना कर पाए हों, तो अवश्य हमारे किसान बहन भाइयों को बताएं।
3: किसान किसी फसल को क्यों अपने खेत में लगाएगा? अगर वह मक्के की फसल लगा रहा है तो उसके बीच में मूंग की फसल वो क्यों लगाए, इसके लिए उसके पास कुछ रीजन होनी चाहिए, कुछ कारण होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको अगर हम एक साथ लगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ेगी? सबसे मेन होता है जो मूंग होती है उसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसके कारण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और इसमें अलग से आपको यूरिया देने की पोटास देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसके कारण आपके पोषक तत्वों का संतुलन उपयोग भी होता है। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं या तिलहनी फसलें होती हैं ये मिट्टी की जो संरचना होती है उसमें सुधार करती हैं। वहीं हम बात करें तो इससे जोखिम कम होगा किसान का। क्यों? क्योंकि जो आप अपनी आय पा रहे थे मक्के से उसके अलावा आपने प्रति एकड़ के हिसाब से अलग से आपने आय पाया है, तो इससे आपकी आय भी जनरेट हुई और जोखिम भी कम हुआ, क्योंकि अगर आपकी मक्का की फसल खराब होती है या मक्के का रेट मार्केट में डाउन होता है तब भी आपका मूंग से प्रायः आपको उतना रेट मिल जाएगा
2: जी।
3: और वहीं बात करें इसमें पानी की भी बचत होती है, क्योंकि जो खाली जगह है वहां अगर मूंग की फसल लगी रहेगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा और उसके कारण हमारे खेत का पानी बचा रहेगा
2: जी।
3: और साथ में खरपतवार नियंत्रण जैसे खरपतवार नाशी का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, तो इससे भी किसानों की आय बढ़ती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो पशुओं

0: लिए हरा चारा उपलब्ध हो जाता है, जो कि हमारे दुग्ध उत्पादन के लिए प्राय सोर्स माना जाता है।
1: बिल्कुल, ये एक तरह से देखा जाए फसल की उपज के अतिरिक्त तीसरा लाभ आपने बता दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो श्री कृष्ण शंकर जी, आपने जो रास्ता दिखाया है अंतर्वर्ती खेती का, खासकर मूंग और मक्के में, हमें आशा है कि ये नई पद्धति अपनाकर किसान बहन भाई अपना लाभ, जैसा कि आपने बताया, तिगुना कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: हाँ तो भैया आरो, अब अपन ने इतनी उम्दा जानकारी सुनी कि मक्का और मूंग की अंतर्वर्तीय खेती, जानकारी दे रहे थे अपने श्री कृष्ण शंकर त्रिपाठी भैया, और इनसे बातचीत करी अपने विपिन यादव भैया ने। तो भैया अपन को भी ऐसे ही कछु करने हैं जैसे अपने भैया हरण्य बताओ अपन को, और खेती जो है वो लाभ को व्यवसाय तो है ही, और अगर हम जो अपने जानकार भैया आते हैं उनके हिसाब से अपनी खेती करें तो अपन और उम्दा फ़ायदा ले सकते हैं अपनी खेती किसानी से। अब भैया एक और बात हमारी सुन लो कि जे जो हमारी भौजी हैं, हमने जो आपसे बात करी हती मुतकी भौजी हैं, कैसे हम तो देखो पूरे पूरा भरे की अपनी जो है वो बिन्नू कहलाते हैं, तो हमारी जो वो दूसरी भौजी हैं वे कलई की बात है, वे अपने मोड़ा को जो रामू को मोड़ा है, मतलब अपने नाती को अपनी कैया में धरे थी और चली जा रही थी, सो हमें मिल गई। हमने कही काय भौजी जा बताओ, जब मोड़ा को कछु खावे नहीं देती का? बोले अरे खावे तो देते हैं पर जाको लगत नहीं है। हमने कही काय ऐसे सूख के टटेरो सो हो रो, दिखा भी नहीं रहो कि जो तुम्हारे रामू को मोड़ा है। अरे बोली का बताएं बिन्नू तुम कहें, हम तो बिल्कुल खबा खबा ये को हैरान रह गए, ये पनपता ही नहीं है और इनके शरीर पे ऐसा लगा था कि चिटी नहीं चढ़े, और खावे को भी कछु चीज़ दे दे भी तो वो खा लेते लेकिन शरीर नहीं पनपे। तो हमने कि ऐसो काय होते हैं? तो बोले ऐसो इसे होते कि जब जो मोड़ा पैदा भाव तो ई की जो महतारी है हमारी बहू रामू की, तो बा ई को दूध नहीं पिवाए, और दूध कहाँ से पिवाए, वो के दूध ही नहीं निकले। उनने जे बात हमसे कही तो हमने कही काय भौजी ऐसी काय कह रही? तो बोले अरे इसी कह रहे, वो खुदा ही नहीं खाती कि वो मोटी ना हो जाए। तो हमने कहा सबसे बड़ी बात तो यही है कि वह खुद नहीं खाती तो वह अपने बच्चा को का दूध पिवाए और का दूध निकले, तो यही से तो तुम्हारा जी बच्चा कुपोषित है। ई को कुपोषण को जो शिकार होगा तो तुमने ई की जाँच वाँच कराई कि नहीं कराई? बोले ई में जाँच का कराने, कौन वो बच्चा मोटो रहत कौन वो बच्चा पत्रो रहत? तो हम सोचा था जी पत्रो ही है। हमने कहा हाँ भौजी जी पत्रो नोई, तुम जाके जो अपने आंगनवाड़ी केंद्र है उतें आते हैं अपनी आशा कार्यकर्ता बहन जी और डॉक्टर निबाई सोई आते हैं, तो उनके पास जाके इनकी जांच कराओ कि जी कौन सी श्रेणी में आ रहा है, कम कुपोषित है कि ज़्यादा कुपोषित है, ऊ के हिसाब से ये खान पान को निर्धारित करो, वे गोली दवाइयाँ दे हैं तो ऊ से जाको शरीर पनपे और जौनी में कमी है इनके शरीर में वह कमी पूरी हुई है। और सबसे बड़ी बात जा है कि अपनी बहू को सोई कहो कि भैया अच्छो खाओ पियो करे, इसे तो वे मोड़ी मोड़न को ध्यान धर पाए, जब भाई खुद कुपोषित रहे तो वे अपने मोड़ी मोड़न को कैसे अच्छो पोषण कर पाए और कैसे पाल पाए, जी तो दुबलो पतलो धरो है। तो भौजी बोली कि हमारे तो भाई कछु कमी नहीं है खावे की, पर बे और खाते ही नहीं है, उनको लगा था कि हम मोटे ना हो जाए। तो हमने कही जी अच्छी समस्या है, आजकल जी बहू बेटियों में जी बड़ी समस्या हो गई कि ज़्यादा खाएं तो मोटे ना हो जाए, उन्हें दुबरी और छरेरी दिखने हैं कि कौन जे ना कह देवे कि इनके दो ठैया बमोड़ी मोड़ा है, बस पतली दिखे हैं वे अच्छी सुंदर। तो हमने कहा इसे कछु नहीं हुए, पतले मोटे तो लगे हैं पर खाने पीने अच्छो सही चाहिए। जैसे अपन देखते ने अपनी धरती मैया देखो कैसी रंग बिरंगी है, उनमें हरो रंग सोई है, लाल रंग सोई है, सफेद रंग सोई है, हर तरह की बरन बरन की उनमें वनस्पति खिलत है। वैसे ही अपनी जो खावे की थाली है ना, बा भी रंग बिरंगी भाव चाहिए, जैसे कि वहाँ में दाल होए, चावल होए, हरी साग सब्जी होए, दूध होए, दही होए और रोटी होए, रोटी में भी अपन गेहूं की भी खाते हैं, कभी कभी ज्वार की भी खाते हैं, बाजरा का भी खाते हैं, मोटे अनाज जो बोलत है ना जिनको अपन श्री अन्न कहन लगे आज के टाइम में, बास वही अपन को खाने हैं। तभी तो जब अपन को पूरा पोषण मिले तब अपनो शरीर पनपे, और वैसे ही भोजन अपन को अपने बच्चन को देने हैं। इतनी बात उन्हें समझावे में कितनी देर लगने, तुम जा सबरी बातें बहू को बता दियो और बात तुम्हारी ना सुने तो एक हाथ देना बस उनको ले जाके आंगनवाड़ी में खड़े कर दियो आशा कार्यकर्ता बहन जी के पास, वे पूरी उनको वो 400-800 मिलत है होते हैं खावे पीवे को, मोड़ी मोड़न को और जो उनकी मताई होते हैं उनको भी मिलत है, तो तैसे मिल जाए ओके हिसाब से खान पान करो, जो तुम्हारा दूबरो सो मोड़ा है ना वो अच्छो पनप जाए और अच्छो लगन लगे। इतनी बात हमने उनसे कही और भी हमसे बोलन लगी कि बिन्नू बात तो तुम्हारी बहुत हो गई, एक हाथ देना हमें सोई ले चलो तुम अपनी चौपाल में। हमने कहा तुम उतें का करो जाके? तो बोले मनोरंजन करें, उतें गावे बजावे बारे आते हैं। तो हमने कही तुम आज घर ही बैठो, हम तुम्हारा मनोरंजन उतई से करवा दें। तो आज हम उनसे कह आए कि अपने मोबाइल में लगा लई आज चौपाल, उम्दा से उतें से हम बाई बिन्ना हरन से गावो सुनवा है तुम्हें, तो सुनाते एक उम्दा सो अपन जी लोकगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ तो भैया, अब देखो भैया, हम आपसे एक और बात बताएं कि अबे बस।

कारो शुरू होगा। और बस कार्य में भैया अपनों और अपने घर में जो मोड़ी मोड़ा रहते हैं और अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं और भी कौनों जने हैं, उनको बहुत स्वास्थ्य को ध्यान रखने पड़ते हैं। अपन को खाबे पीबे से लेके हर चीज़ को अपन को ध्यान रखने हैं। कैसे ये टाइम पे बीमारी हजारी बड़ी आते हैं, मौसम परिवर्तित होते, गर्म ठंडो सभी कछु लगो रहते, पानी सोई बरस रहो, अच्छे से अपने उड़ना लत्ता नहीं सूख पाए तो और मुत की सारी बीमारियाँ आ जाते हैं। तो अपन को इन चीज़ों को ध्यान रखने हैं। और सबसे बड़ी बात खाबे में जा ध्यान रखने कि हमें ताजो ताजो भोजन करने हैं, मतलब जो नू कछु खावे पीबे को बनो है वो उतो ही बनाने उतो ही खाने। ऐसा नहीं कि घर में अपन देखते हैं भाई बनना रहे हैं, ठीक है बासो ती बासो धरो बासो ही खा लो गरम करके, हाँ हाँ बा खावे से सोई अपन को पेट में परेशानी हो सकते है, तबीयत खराब हो सकते है। और ये मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि डायरिया हो जात, उल्टी दस्त शुरू हो जात, तो इन सबसे अपन को बचने हैं। और सबसे बड़ी बात कि जौन हमारे ढोर बछेरू हैं, है ना, बे तो बोल नहीं पाए, बे अपनी समस्या कोई से नहीं बता पाए, तो अपन को उनको सोई बड़ो ध्यान रखने है। और सबसे बड़ी बात ई टाइम पे जगह जगह हरियाई खूब होते, हरो चारो बहुत है, और अपने गैया भैंसिया जो है खूब हरो चारो खाते हैं तो उसे भी परेशानी होते, उन्हें जो पेट की समस्या होते, खाना उनको पचे नहीं, तो बात पे भी अपन को ध्यान रखने कि उन्हें हरियाई के संगे अपन को भूसा सोई देने, दाना भी सोई देने, और उनके खावे में अपन को नमक की व्यवस्था सोई पूरी सुनिश्चित करने कि उनके भोजन में अपन को नमक सोई मिलाने, इसे उनको स्वास्थ्य सही रहे। तो भैया जब स्वास्थ्य सही रहे अपने ढोर बछेरों को तो भी अपन को दूध उमदा दें, दूध उमदा दें तो अपन को चार पैसा की आमदनी सोई हुई है। और सबसे बड़ी बात उनको पीवे को पानी भी अपन को साफ भरने, ऐसा नहीं हुए कि उनकी जो नाद है पानी पीवे की वे गंदी हुए, उनमें जे कह लो कई लगी हो कि चोई लग जाए, तो बस अब कछु नहीं लगने, बढ़िया चूना डाल के अपन को पानी की उनकी नादन को साफ करने, और जो उनकी खावे की जो चारे की जो व्यवस्था हो बस वही बढ़िया अच्छे अपन से साफ करके धो के सुखा के तभी उनके अपन को सानी करने। ऐसा नहीं कि वही के वही में अपन कर दे में तो खा रहे हैं उन्हें कब समझ में आए, हाँ भैया बेस वही अपने घर के जो अपने सदस्य होते हैं वैसे ही होते, कैसे बे अपनी कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं खेती किसानी वालों के लाने, तो जा बात है कि अपने जो ढोर बछेरू होते हैं बा भी अपने घर के सदस्य घाई होते हैं। और अपना अब जैसे अपन अपने घर के लोगों को ध्यान रखा वैसे उनको सही ध्यान रखने, और उनकी जो रहवे की सराय है वाह बिल्कुल हवादार होए, उतने मच्छर मक्खी की व्यवस्था भी पूरी अपन को देखने की, वाह कछु ऐसा नहीं कि खूब मच्छर दंदे हैं तो खूब मक्खियाँ दंदी हैं कि कहूँ उनके कछु घाव होए तो ऊपर मक्खी बैठ रही, जिस सब चीज़ को ध्यान रखने। और अपन को ये देखने की अगर उनकी समस्या बड़ी हो रही है तो खुद ही डॉक्टर ना बन जाओ, खुद डॉक्टर ना बन के अपन को जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं ना उनके पास जाके उनको उपचार करवाने हैं, तभी वे स्वस्थ रहें तो अपन को भी अच्छा लगे। अब बात है तो मुतकी है हमारे पास। और भैया एक और हम बात बता दें मैं आपको कि आज की जो हमारी चौपाल सजाई है, आज जितनी भी बाई बिन्ना हरें आई हती हमारे संगे उनमें चित्रा देवी तिवारी थी, इंदुबाला मिश्रा थी और शोभा भट्ट जी ने आज उमदा उमदा से अपन को गीत सुनवाए, लोकगीत सुनवाए, और जो अपन को जानकारी दी खेती किसानी की जी दई अपन को श्री कृष्ण शंकर पाठी भैया ने, और इनसे बातचीत करी अपने विपिन यादव भैया ने। अब भैया हो रही है हमारी चलवे की बेरा, तो सभी जनों से मधुवंती बिन्ना की राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद ठीक 8 बजे सुर्खियों में हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा का पहला चरण इंडोनेशिया की यात्रा के साथ आज समाप्त हुआ है और भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हुए हैं जो कई क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे वो रक्षा हो, उद्योग हो, तकनीक हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संस्कृति, इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह से महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं वो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो आज हम प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: कमल जी, आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: सबसे पहला मेरा मूल जो सवाल है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई वो कैसे भारत के और इंडोनेशिया के संबंधों को आगे आने वाले समय में और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और कैसे दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग, जो खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक एक क्षेत्र है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
2: यदि हम इंडोनेशिया और भारत को देखें तो बहुत लंबे सभ्यतागत रिश्ते दोनों देशों के बीच में रहे हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का ध्वजावाहक इंडोनेशिया भी है और 2018 तक 1949 से जो राजनयिक कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुए थे बहुत अच्छे चले। 2018 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की यात्रा की तो इन संबंधों को एलिवेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हमने शुरुआत की और इसके बाद से हमने देखा कि कैसे जो एक क्रिटिकल महत्व के सामरिक क्षेत्र है इसमें न सिर्फ दोनों देशों के अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बल्कि यदि हम हिंद प्रशांत के क्षेत्र को देख लें तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कैसे रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश लगातार आगे बढ़े हैं। और इसमें अब ये देखना सुखद है कि इस बार की यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण MOU साइन हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी डील तो ब्रह्मोस मिसाइल प्लस डील को माना जा रहा है जिसमें इंडोनेशिया हमारी होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स को न सिर्फ लेगा बल्कि फिर आगे को प्रोडक्शन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारा भागीदार होगा। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को लेकर के, सामुदायिक सुरक्षा को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के और हमारे इलेक्टोरल मैनेजमेंट की जो सराहना की है इंडोनेशिया ने, तो EVM मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी एक बड़ा MOU दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। और ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए और विकास को विस्तार देने के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्टेबल बनाए रखने के लिए, प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंस फ्री बनाए रखने के लिए ये समझौते आगे चल करके बहुत कारगर साबित होंगे।
1: प्रोफेसर अंशु जोशी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि भारत और इंडोनेशिया का जो एक, अगर रक्षा सहयोग की हम बात करें तो दशकों पुराना एक साझेदारी जरूर रही है लेकिन पहले ये खाली एक संयुक्त, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर जो होते थे, एक संयुक्त जिसमें कि हम कह सकते हैं एक मैरिटाइम पेट्रोलिंग तक ये सीमित था लेकिन अब इसे उद्योग तक बढ़ाने की एक पूरी पहल हुई है। तो कैसे जो समझौते हुए हैं ये भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा सहयोग है, खासतौर पर जो उद्योग है और आदान प्रदान है, उसमें और ज्यादा इससे बढ़ोतरी होगी।
2: कमल जी, पहले तो हम ये समझे कि भारत की जो छवि थी वो आज से 11 वर्षों पहले तक रक्षा के क्षेत्र में एक इम्पोर्टर देश की छवि थी। हम जो अपने रक्षा के इक्विपमेंट थे वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते थे लेकिन अब 11 वर्षों में ये देखना बहुत सुखद है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी छवि एक एक्सपोर्टर देश की छवि बनी है और हमने अपने यहाँ पर इतने बढ़िया रक्षा प्रणालियों को, अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों को विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उसकी चमक और धमक पूरी दुनिया ने देखी। तो अब इंडोनेशिया के साथ भी जब हम रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो बात द्विपक्षीय या आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक जॉइंट मिलिट्रल एक्सरसाइजेस की और सामुदायिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह जाती। एक तो जो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर के बड़ी डील हुई है उसको लेकर के भी आगे ये बिंदु देखने को मिलते हैं कि इंडोनेशिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो ये पूरा हमारा आह्वान है, मिशन है, इसके तहत जो हम अपने रक्षा क्षेत्र में इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें इंडोनेशिया हमारा बड़ा साझेदार बनेगा। इसके साथ आपसी निवेश की भी बात है और जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको सरल बना बढ़ाते हुए इसमें जो दूसरे औद्योगिक जगत से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको शामिल करने की बात है। तो हम दोनों देशों की ओर देखें तो बड़ी आबादी वाले देश हैं भारत और इंडोनेशिया, तो इससे फिर जो है प्रोफेशनल मोबिलिटी को और एम्प्लॉयमेंट को भी हम मजबूत होते हुए देख सकते हैं। तो ये रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से अलग अलग प्रकार के तकनीकी साझा करने को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, इक्विपमेंट के आदान प्रदान को लेकर के, और इसके

0: अलावा अलग अलग जो हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग शुरू हैं दोनों देशों के बीच में, और जो कार्यक्रम होंगे ये भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। जी कम
1: तो आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाले पक्ष हैं, वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में?
0: कमल जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए आज किस तारीख में यदि उसकी शक्ति के संचालक तत्वों को हम देखें तो उसमें उसकी आर्थिक शक्ति का एक बड़ा महत्व होता है। तो जब हम भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को व्यापार की ओर दृष्टि डालें तो विगत कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं ये संबंध। आज $38 बिलियन का लगभग व्यापार है दोनों देशों के बीच में। भारत बड़ी मात्रा में क्रूड पाम ऑयल को इंडोनेशिया से मंगाता है। वहीं हम इंडोनेशिया की ओर देखें तो फार्मास्यूटिकल से लेकर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तक जो है हम यहाँ से अपने यहाँ से इंडोनेशिया को भेज रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में तो विशेषकर जैसे स्टील के क्षेत्र में ये देखना सुखद रहा कि हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल और इंडोनेशिया की जो क्रकताऊ स्टील है उन्होंने स्टेनलेस स्टील के स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से रेयर अर्थ मैग्नेट्स को साथ में को डेवलप कर सकते हैं इसको लेकर के एक बड़ा समझौता किया है। इसके अलावा आप देखें कि इसमें अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग्स को भी शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ हम यदि देखें तो व्यापार के क्षेत्र में कैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर बढ़ावा देते हुए फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हम कैसे उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ा सकते हैं इसको लेकर के भी समझौते देखने को मिले हैं। तो व्यापार की दृष्टि से निश्चित तौर पर रिश्ते नई उड़ान ले रहे हैं। और द्विपक्षीय के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आसियान का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया हमारे साथ। तो फिर जब ऐसे देश हमारे साथ द्विपक्षीय स्तर पर मजबूती से खड़े रहते हैं तो फिर आर्थिक दृष्टि से चाहे हम ऐसे व्यापार समझौतों की बात करें या कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की
1: जी
0: बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो वहां फिर आसियान जैसे मंचों पर भी भारत की स्थिति मजबूत होती है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक परमानंद मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के बीच हुए सहयोग के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: तो जो मजबूत ऐतिहासिक संबंध है उनको नई दिशा देने में किस तरह से ये सहयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और आज जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही परमानंद मंदिर की उस पर भी आप क्या कहेंगी?
0: कमल जी, ये आपने चर्चा में बहुत ही सुंदर आयाम जोड़ा है। और यदि हम भारत के इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि हमारे सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति को देखें तो वो हमें इंडोनेशिया में भरपूर दिखाई पड़ती है। उसका ध्वजावाहक के अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं, जिस प्रकार से संस्कृत का यहाँ सम्मान है, भारत की अलग अलग भाषाओं का सम्मान है। और इसके साथ हम रामायण और महाभारत की धरोहर को जिस तरह से इंडोनेशिया द्वारा संभाले जाते देखते हैं वो अपने आप में अनोखी है। मुद्रा पर यहाँ की गरुड़ अंकित है, गणेश की पूजा होती है। तो ऐसे में जो ये बहुत महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, पुराना शिव मंदिर है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का जाना और भारत द्वारा इस बात का बीड़ा उठाया गया है कि इस पूरा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार, इसकी तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता भारत करेगा, तो किस प्रकार से नवाचार के माध्यम से नई तकनीकों को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए भारत आगे बढ़ रहा है, ये एक इसी बात का द्योतक है। तो आज जो प्रधानमंत्री इस प्रसिद्ध शिव मंदिर गए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ वहां पर जीर्णोद्धार के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, तो ये उसी बात को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, उसका ये एक प्रतीक है। कमल,
1: दोनों देशों ने आतंकवाद को लेकर साझा रुख स्पष्ट किया है, तो क्या कहेंगे इस पर?
0: बिल्कुल कमल जी, भारत का अलग अलग मंचों से ये वर्षों से प्रयास है कि आतंकवाद को पूरा पूरा विश्व मिलकर एक मुंह तोड़ जवाब दे। और न सिर्फ भारत, आज विश्व के कई देश, सशक्त देश जैसे कि अमेरिका, आतंकवाद का शिकार बने हुए हैं। और ऐसे में जब भारत, हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें इंडोनेशिया जैसे देश बहुत सशक्त साझेदार के रूप में खड़े दिखाई पड़ते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर भी और बहुपक्षीय स्तर पर हम देखें तो ब्रिक्स के मंच पर, G20 के मंच पर, आसियान के मंच पर, और ये भारत की महासागर डॉक्ट्रिन में जो ये म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन की बात हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से की थी, इसके पहले सागर की बात की थी, तो इसमें ये सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र या हिंद महासागर को सुरक्षित रखने की बात नहीं है, प्रॉस्परस बनाए रखने की ही बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद निरोधी हम कैसे अलग अलग तकनीकें हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसकी भी बात है। और कल हमारे प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में घिरे संकट का समाधान भी सुझाया। उन्होंने बताया कि जैसे भारत टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, इसको पूरे विश्व को ध्यान से समझना चाहिए और पश्चिम एशिया के देशों को इसे अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ जब आतंकवाद निरोधी जो उपाय हैं उनको जब उन्होंने अपनाने की बात की, तो यहाँ पर तकनीकी कहीं ना कहीं सहयोग के स्तर पर, नियमन के सहयोग के स्तर पर, और फिर एक जनता की दृष्टि से भी देखिए जिस प्रकार का लोगों का यहाँ से साथ हमको मिलता है, इस बात को मिलता है, इस लड़ाई को मिलता है, तो भरपूर सहयोग इंडोनेशिया का जो है भारत को मिलते हुए दिखाई पड़ता है। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी इस बात का पक्षधर है कि विश्व में शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और इसी की बात हमारे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की संसद में।
1: इंडोनेशिया में बसे भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: Our language, I would say, Falizon, Minister of Culture, our language was 50% from Sanskrit. Many of our names are Sanskrit names, and therefore there is this closeness, and we welcome more close cooperation.
1: आखिर में प्रश्न मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे दोनों देशों के बीच 1200 किलोमीटर की एक लंबी समुद्री जो सीमा है वो साझा होती है, तो किस तरह से महासागर विजन और इस तरह के जो समुद्री सहयोग हैं उसमें दोनों देशों की एक मजबूत साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है आने वाले समय में।
0: इंडोनेशिया की और दृष्टि करें तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक महत्वपूर्ण या सहयोगी देश है, और महासागर विजन की दृष्टि से भी देखें तो इंडोनेशिया की जब हम लोकेशन को देखते हैं, उसके महत्व को देखते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पर थे, और ये तमाम हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने ये देश हैं इनकी ओर भारत का ध्यान है, ताकि चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी अपनाई, एक नेगेटिव कूटनीति भारत को घेरने के लिए या इन सामुद्रिक क्षेत्रों में अपना असर्शन दिखाने के लिए, उसका कहीं ना कहीं मुकाबला किया जा सके और इन सामुद्रिक क्षेत्रों को किसी भी देश के प्रभुत्व से मुक्त रखा जा सके। इंडोनेशिया इसमें भारत का बिल्कुल साझेदार सहयोगी है इसके रूप में नजर आता है, और इस नीति के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के और रक्षा सहयोग को लेकर के बातें भारत करता है, और इंडोनेशिया, सेशल्स, मॉरिशस ऐसे देशों को बड़ा अपना लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी प्रदान करता है। तो ये देखना सुखद रहा कि इंडोनेशिया का जो महत्वपूर्ण सबांग बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार से बहुत करीब है, और यहाँ भारत जो है इस पोर्ट के विकास के लिए अपना आर्थिक और तकनीकी सहयोग देगा, इससे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज में भी सहायता मिलेगी, और भारत को जो जियो स्ट्रेटेजिकली ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो इंडोनेशिया से लगी है, इसका अर्ली और टाइमली एक्सेस जो है वो भारत को मिलेगा। वहीं इंडोनेशिया को भारत के सबांग एयरपोर्ट को विकसित करने से व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बड़ा लाभ मिलेगा। तो भारत की जो महासागर नीति है वो ये तमाम लाइक माइंडेड देशों को साथ में लेकर इन समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, व्यापार बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की है। तो इसमें इंडोनेशिया के साथ एक भविष्य की जो रूपरेखा है वो भारत ने तय कर ली है, और अब दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार हैं।
1: जी निश्चित तौर पर, और जो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और इसके अलावा जो एक वैश्विक साझा विकास है, इस दिशा में दोनों देशों की साझेदारी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है, और इन समझौतों से इस साझेदारी में और मजबूती मिलेगी। आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी और भारत इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों पर आपने विस्तार से अपना विश्लेषण हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार कमल जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: सुर्खियों में
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम।
7: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 8:15 हुए हैं। फिल्म संगीत। हेट स्टोरी 4 इस फिल्म से लीजिए सुनिए जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में ये गीत, संगीत आर्को का।

लीजिए सुनिए दुनिया ना जाने क्यों। इस फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और शान की आवाज़ में, संगीत निखिल का।

अब दिल्ली दूर नहीं, इस फिल्म से लीजिए सुनिए जुबीन नौटियाल की आवाज़ में अजय सिन्हा का गीत, संगीत भी अजय सिन्हा का ही।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए अमावस फिल्म का गीत, जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाज़ है, संगीत संजीव दर्शन का।

लीजिए अब सुनिए मोनाली ठाकुर की आवाज़ में अगला गीत। संगीत शांतनु मोइत्रा का और गीत तनवीर गाजी का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। अब से कुछ ही देर बाद ठीक 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ एट 9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई

0: में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
4: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
6: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ

0: स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार,
2: धन्यवाद।
0: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एलनीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
1: एलनीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, लानीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहाँ जिस जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफ़ी सारे बदलाव लेके आता है कि जहाँ कहीं बारिश होती है पहले वहाँ सूखा पड़ने लगता है, और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहाँ की प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलनीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलनीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलनीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज़्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं, तो ये ठीक है। मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एलनीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज़्यादा होंगे। और इस सब को मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी ज़रूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहाँ होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहाँ बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहाँ पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहाँ पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है, होम मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी हैं कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
0: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
1: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक सीट हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
0: प्रभावित होंगे,
1: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के बाद पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफ़ी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिस सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम

0: पे आधारित खेती करनी है। जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है, सेमी एरिड एरिया है।
1: जी
0: पैडी लगा रहा है कौन, पंजाब, सेमी एरिड एरिया। ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है। मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज़। और दूसरी बात, जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा, फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई अलिनो है, इस बार मानसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है। तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए, जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोई कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए। और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है। और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है। और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि

0: इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो। जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है, इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ आपको कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा, तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इस

0: मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज़ है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहाँ पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहाँ चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में, जहाँ पे किसान आके ये सब चीज़ों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है, वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजें, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दें, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूं, ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजर देते हैं, वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए, और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है, तो अब यह देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए

0: कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है। और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है, कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है, कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। आपके साथ संगति की है तबले पर शफाकत अहमद खान ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी, आपके साथ संगति की तबले पर शफाकत अहमद खान ने। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। रिज प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, मन भावन लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी दोस्त रेखा, और चलिए शुरू करते हैं खतों का सिलसिला और सुनवाते हैं आपकी पसंद के मिट्टी की सुगंध लिए से गीत। आइए सुनते हैं पहली पसंद आप सभी की, गढ़िया मौजे अस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष, कुंदन, करीना, पूजा, आरती और सुनीता देवी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती और गोटेगांव से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता, दिव्यांश कुमार चौरसिया। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए जहर फिल्म का गीत, सईद कादरी का संगीत। सईद कादरी का गीत और संगीत है रूप कुमार राठौड़ का। इस गीत में आवाज़ आतिफ असलम की।

अगला गीत आप सभी की पसंद पर बिलहरी बर्ड खेड़ा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, शारदा, सपना, सत्यम, शिवम, सृष्टि, मेघा और आपका परिवार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव बीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक और मीका बीरक। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और नाज प्रवीण, चांदनी नाज। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं जिस्म फिल्म का गीत। श्रेया घोषाल की आवाज़ है, गीत नीलेश मिश्रा का, संगीत एमएम करीम का।

अगला गीत आप सभी की पसंद पर। सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी, प्रमोद, सिद्धार्थ और सृष्टि राही। ग्राम सरई केवलारी से कमला प्रसाद शर्मा और आपका परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से ही अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। आप सभी की पसंद पर आनंद लीजिए। खानदानी शफाखाना फिल्म का ये गीत अल्तमश फरीदी की आवाज़ में, संगीत अनु मलिक का।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधु फिल्म से। अमित कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत और संगीत राहुल देव बर्मन का। पसंद आप सभी की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर आनंद लीजिए इस गीत का।

अगला गीत आप सभी की पसंद पर, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रोजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, दतुरेंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, जबलपुर बर्गीनगर से रविंद्र गढ़े, सुभाष दिगंबर, राजेश शिवम और शुभांग और सृष्टि गढ़े, आप सभी की पसंद पर आनंद लीजिए इस गीत का, जिसे हमने लिया है आज़ाद फिल्म से, स्वर लता मंगेशकर का।

श्रोताओं, आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमें खत लिखिए। हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम मन भावन, द्वारा केंद्र निदेशक, कटंगा, आकाशवाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 14, आकाशवाणी जबलपुर, पिन क्रमांक है 482001। और इजाज़त दीजिए आपकी अपनी दोस्त रेखा को। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद ठीक 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को

विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।